सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की तिथि 12वीं, तदनुसार 2 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में

0: रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi. The discussions covered trade, defense, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks yesterday, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. Mr. Misri said that both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Bethwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and the Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident, which took six lives. District Magistrate

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें।

सभी किसान भाई बहनों को नीलू का जोहार। खेतिहर बंधुओं, सुबह के समय खेतों में ढेर सारे काम होते हैं और आप इसकी तैयारी में लगे हुए रहते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि मिर्च की नर्सरी किस तरह तैयार की जाए कि अच्छी उपज हो। किसान भाइयों, मिर्च की नर्सरी तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जगह का चुनाव करना जहाँ नर्सरी बनाना है। खेतिहर भाइयों, नर्सरी के लिए ऐसी जगह चुने जहाँ पर्याप्त धूप आती हो और पानी का जमाव ना हो। इसके लिए जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना ले। क्यारी में बीज बोने से पहले मिट्टी को उपचारित जरूर कर ले। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद मिट्टी में मिलाए। किसान भाइयों, इन तैयार क्यारियों में बीज बोने से पहले बीज को रगड़कर अच्छी तरह से साफ कर लें और पानी में भिगो लें। बीजों को उपचारित जरूर करें। क्यारी में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आधा से 1 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर बीज बोएं और हल्की मिट्टी से ढक दें। हल्की फवारे से सिंचाई करें। पौधों को तेज धूप और कीटों से बचाने के लिए ऊपर से 50% शेड नेट या कीटरोधी जाली से ढक दें। बीजों को

होने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। इस दौरान क्यारी में नमी बनाए रखें, इसके लिए घास फूस या पुआल से क्यारी को हल्का ढक दें ताकि नमी बनी रहे, और तेज धूप से बचाव हो इसके लिए भी इन्हें ढकना बहुत जरूरी है। अंकुरण होते ही इसे हटा दें, खरपतवार ना पनपने दें और जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। खेतिहर बंधुओं, ये मौसम रोपाई के लिए सही है, इसलिए जब नर्सरी के क्यारियों में लगाए गए बीज जिससे पौधे निकल आए और उनकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, 4 से 6 पत्तियां निकल जाए, तो इन्हें तैयार खेतों में रोपें। रोपाई हमेशा शाम के समय करें और तुरंत पानी दें। नर्सरी से पौधों को निकालने के पहले उनमें हल्का पानी का छिड़काव करें ताकि उनकी जड़ें टूटे नहीं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि खेत को तैयार कैसे किया जाए, तो किसान भाइयों, आप अपने खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगा लें, मिट्टी को भुरभुरा बना लें और उसमें जैविक या गोबर की खाद अच्छी तरह से मिला लें। पौधों की रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, मिर्च के फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। 1 हेक्टेयर खेत में 200 से 250 क्विंटल गोबर की पूरी तरह से सड़ी खाद या 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद खेत की तैयारी के समय ही उसमें मिला दें। नेत्रजन 120 से 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 1 हेक्टेयर खेत की रोपाई के लिए लगभग 100 ग्राम बीज की जरूरत होती है। किसान भाई बहनों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मिर्च की नर्सरी की तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होगी।

आज का चिंतन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हारने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

हरि ओम शरण के गाय इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप, बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 पर स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण होगा। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुन सकते हैं 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का समय होता है प्रादेशिक समाचार का। 8:45 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा और सुबह 9:00 आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के रचे गाने। 9:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। 10:20 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 का हमारा समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:23 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 मिडडे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और 3:00 आप सुनेंगे NCRT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर सुगम संगीत सुनवाया जाएगा। 3:45 पर आप आनंद ले सकते हैं लोकगीतों का। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का प्रसारण। 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। 5:30 का समय होगा कल कारखाने का। संध्या 6:00 आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 6:10 पर आप आनंद लेते हैं झारखंड के लोकगीत का। संध्या 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से और यहीं से आप सुनते हैं जिले में आजकल 7:10 पर। 7:15 का समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम आलोक। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से आप सुनते हैं रात्रि 9:00 न्यूज़ एट नाइट। 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं आप सुनेंगे गजलें। ये गजल है फनकार जगजीत सिंह की आवाज़ में।

जगजीत सिंह के गाए इस गजल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं लोक गीतों के कार्यक्रम में अंगिका गीत निरंजन शर्मा और साथियों से।

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे हैं निरंजन शर्मा और सर

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक गीतों के कार्यक्रम में निरंजन शर्मा से अंगिका गीत। इसी के साथ हमारा आज का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजली। कार्यक्रम सुरांजली में श्रोताओं, आज आप सुनेंगे शुभमिता का गाया आधुनिक गान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे यह आधुनिक गान शुभमिता से, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे अपेंडिसाइटिस कारण और बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज बातें अपेंडिसाइटिस के बारे में। अक्सर लोग अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है उसकी शिकायत करते हैं। आखिर में ये है क्या और इससे फिर हम कैसे बच सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, अपेंडिसाइटिस होता क्या है?
1: अपेंडिसाइटिस रोग को समझने के लिए अपेंडिक्स की परिभाषा समझनी होगी। अपेंडिक्स बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पे एक अंग है जिसका काम है वो घास को पचाने के लिए एंजाइम पैदा करना। जो जानवर घास पर जिंदा रहते हैं उसमें ये अपेंडिक्स अंग जो है फंक्शनल होता, काम करता है और वो पाचक रस पैदा करके घास को पचाता है
0: जी।
1: लेकिन ये क्रमिक विकास के तहत जानवर से बंदर होते हुए आदमी का जो विकास हुआ तो आदमी घास खाना छोड़ दिया तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, वो नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन बन गया। अब उसमें अपेंडिक्स में अब कोई काम नहीं रहा और इसके कारण जो है अपेंडिक्स इंसान में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के कारण अब उसमें उसका नॉन फंक्शनिंग होने के कारण ऐसे ही पड़ा रहता है।
0: किन कारणों से लोग दर्द की शिकायत करते हैं?
1: हाँ, वो नॉन फंक्शनिंग गैर वाजिब अंग में, चूंकि वो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे है तो उसमें एक छोटे से छेद रहते हैं जिसमें पैखाना कभी घुस जाता है।
0: अच्छा।
1: या कभी उसमें पथरी बन जाता है या कभी उसमें कोई कीटाणु घुस जाता है तो उसमें सूजन पैदा हो जाता है और वो बैलून नुमा फूल जाता है।
0: अच्छा।
1: और तब जब फूलने पर उसमें दर्द पैदा होता है और कभी कभी वो फट भी जाता है।
0: तो कैसे लोगों को यह पता चले कि अपेंडिसाइटिस का दर्द उनके शरीर में हो रहा है?
1: अपेंडिसाइटिस के तीन प्रमुख लक्षण हैं। पहला, दर्द पेट के निचले दाएं भाग में यदि दर्द हो रहा है तो ये अपेंडिक्स का पहला लक्षण है। दर्द होने के कुछ ही देर बाद यदि पेशेंट को उल्टी आने लगे तो समझ लीजिए कि ये अपेंडिक्स का उल्टी है।
0: अच्छा।
1: और उसके 12 घंटे बाद यदि पेशेंट को बुखार आ जाए तो ये कंफर्म हो गया। दर्द, उल्टी और बुखार, ये तीनों कंफर्मेटरी लक्षण हैं अपेंडिक्स होने के।
0: अगर मान लीजिए कोई इस तरह के दर्द को नजरअंदाज कर रहा हो लगातार तो कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए?
1: बहुत सारे मरीज इस तरह से दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा के दर्द को दबा लेते हैं और फिर बुखार आ गया तो बुखार की गोली खा के दबा लेते हैं, तो इसका

0: दुष्परिणाम अपेंडिक्स के फटने के रूप में निकलता है, जिसको परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस कहते हैं। वो एक तरह से छोटा बम है जो पेट के अंदर फूट जाता है और आसपास के सारे अंगों को काफी डैमेज पहुंचाता है।
1: तो किस तरह की हानियां होती है आंतरिक अंगों में अगर किसी का अपेंडिक्स अंदर में अगर फट गया है? तो
0: अपेंडिक्स फट जाने पर ये जानलेवा होता है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत और आसपास के अंगों को वो डैमेज करता है। डैमेज कीटाणु के रूप में, उसको सड़ाने के रूप में, इन्फेक्शन करा के करता है, जिसके कारण पेट के अंदर बहुत तेज पीड़ा होती है। वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में जब कंफर्म हो जाता है तो उसका इमीडिएट इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाता है।
1: अंत में एक सलाह उन मरीजों के लिए जो अपेंडिक्स के दर्द से परेशान रहते हैं।
0: जिस मरीज को अपेंडिक्स का दर्द होता है, पहले दर्द में मरीज को ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। टेम्पररी इलाज सुई दवाई से उसके सूजन को कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये पहली बार आपने सूजन को कम कर लिया तो दोबारे उठेगा और दर्द तिबारे उठेगा। बार बार होने वाले अटैक को अल्टीमेटली परफोरेशन होने का रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है। इसीलिए छुटकारा पाने के लिए मेरा सलाह है कि पहली बार में ही इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक अंग है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, उसके कारण से होता है। और यदि इस तरह का कोई दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो जैसा डॉक्टर मनोज ने बताया कि तुरंत किसी सर्जन से सलाह लें और ऑपरेशन ही एकमात्र इसका उपाय है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, एपेंडिसाइटिस कारण और बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मनोज कुमार, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
7: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
8: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में

0: अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये

0: का 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
5: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
4: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
6: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement, BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News.

0: समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल। मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के एकीकरण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की। पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले दिन एक भी नामांकन नहीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय। गठबंधन ने दोनों सीट पर किया जीत का दावा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा। कहा, श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति ने खनन प्रभावित रैयतों को मुआवजा और नियोजन को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रभावित परिवारों से लिए गए आवेदन। और राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना। 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग तथा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण और खास महल भूमि से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से नागरिकों को भूमि संबंधी अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी तथा विवादों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क और रूट चार्ट तैयार करने पर भी जोर दिया। बैठक में सड़क सुरक्षा, IDTR, वाहन निरीक्षण केंद्र, गुड सिमेट्रीरण योजना तथा गुरुजी आपातकालीन सेवा 1944 को शीघ्र लागू करने समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी। झारखंड की दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। अब तक एक भी नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से संबंधित पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जमशेदपुर दौरे के दौरान परिसदन में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश इकाई ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की चुनाव समिति है, लोग बैठे थे, बैठ करके हम सब लोगों ने चर्चा की और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है। जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो भी तय करते हैं उसके किसको लड़ाना, तो आप केंद्र जब तय करेगी तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से बता देते।
0: इधर महागठबंधन में कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। देवघर में पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने श्रावणी मेला की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। आगामी श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर देवघर और दुमका जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: NH की तरफ से

0: आश्वस्त किया गया है कि डीआरएम आसनसोल से बात करके रेलवे का ब्लॉक लेते हुए ससमय उसको पूरा कर लिया जाएगा। इंटर डिपार्टमेंटल में एनएचएआई, रेलवे और हमारा जिला प्रशासन मिलकर काम कर लेगा। देवघर जिला प्रशासन और दुमका जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों से जो आवंटन की मांग की है उसकी सूची हम लोगों ने प्राप्त कर ली है कि ससमय यह आवंटन जिला को उपलब्ध हो जाए जिससे किसी भी काम को करने में कोई विलम्ब न हो।
1: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने रांची के नगड़ी और इटकी प्रखंड में हनी वैल्यू चेन परियोजना के तहत संचालित हनी माइग्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और पैकेजिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने तथा व्यवसाय के विस्तार पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति ने धनबाद में खनन प्रभावित रैयतों के मुद्दे को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। इस दौरान बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी।
2: इस समिति जब से 9 महीना बना तब इसी दरमियान 220 करोड़ रुपया भुगतान विशेषज्ञ ने सरकार को किया है और वो भी काफी अधूरा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि बीसीसीएल, सीसीएल, रिसेल जितने भी कंपनी यहाँ सरकारी जमीन को जो उपयोग कर रहे हैं उसका भी राशि दे।
1: रांची प्रक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, भूमि अपराध और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए विशेष अभियान चलाने तथा 10 से 25 जून तक शैक्षणिक संस्थानों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया।
3: कुछ जो बहुत अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं उसके लिए कुल 23 पदाधिकारियों को आज प्रशस्ति पत्र मेरे द्वारा दिया गया है। जो मादक पदार्थों की सेल या बहुत सारे अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं जहां पे कुछ क्रिमिनल्स को भी पकड़ा गया है कि सिर्फ कैरियर्स ही नहीं बल्कि जो उसका स्रोत है उस पर एक्शन होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर एक्शन होना चाहिए।
1: रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ अल्बर्ट टिक्का चौक से अंजुमन प्लाजा तक यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और फुटपाथ पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए।
4: मेन रोड का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग प्रयास है हमारा कि उसको थोड़ा हम लोग हैसल फ्री बनाएं और जो अनावश्यक कंजेशन जो जगह जगह पे लग रहा है उसको हम लोग रिमूव करें ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट पूरे राजधानी का यही है कि ये और किशोरगंज चौराहा है, तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको स्मूथ बनाकर कुछ बैरिकेडिंग इत्यादि करके और अपने जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और उन पर डिप्लॉयमेंट करके हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे जो है बनवाएं।
1: सरायकेला खरसावां जिले के कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन में एक बड़ा उलटफेर किया गया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जिले के 12 थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड क्षेत्र में आयोजित 6 दिवसीय मंडा मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। इस दौरान पारंपरिक झूलन अनुष्ठान और दहकते अंगारों पर चलकर शिव भक्त

ने धार्मिक परंपरा निभाई। राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा और निर्देश की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम का निर्देश, अब राज्य में विद्यार्थियों को साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, झारखंड में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत खरगे में बातचीत, झामुमो प्रत्याशी की घोषणा आज संभव। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीडीएस सिस्टम में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशिक्षित होंगे अधिकारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के एकीकरण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की, पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा, उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय, गठबंधन ने दोनों सीट पर किया जीत का दावा। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने देवघर में की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा, कहा श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति ने खनन प्रभावित रैयतों को मुआवजा और नियोजन को लेकर की समीक्षा बैठक, प्रभावित परिवारों से लिए गए आवेदन। और राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना, 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

इतिहास के पन्ने पर एक गहरी उदासी के साथ दर्ज है। जी हाँ, आज ही के दिन साल 1988 में भारतीय सिनेमा ने सबसे बड़ी जादूगर, अपनी आंखों के सबसे खूबसूरत सपने को खो दिया। जी हाँ, आज भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब की पुण्यतिथि है। राज कपूर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि ये अपने आप में सिनेमा का एक पूरा दौर थे। नीली आंखें, चेहरे पर वो मासूम से मुस्कान और चार्ली चैपलिन के अंदाज में आम आदमी के सुख दुख को पर्दे पर उतारने की वो गजब की कला। उन्होंने हमें आवारा में हंसना सिखाया, श्री 420 में ईमानदारी का रास्ता दिखाया, तो मेरा नाम जोकर में

दोस्तों, राज कपूर साहब को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था। जब वे दिल्ली में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। खुद राष्ट्रपति उनके पास चलकर आए थे सम्मान देने। एक महीने तक जिंदगी से लड़ने के बाद आज ही के दिन वो हमेशा के लिए दुनिया के रंगमंच को अलविदा कह गए।

दोस्तों, कलाकार चले जाते हैं पर उनकी कला हमेशा जिंदा रहती है। आज राज कपूर साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्मों के सदाबहार नगमे, आरके स्टूडियो की वो विरासत और उनका सिनेमा हमेशा हमारे दिलों में धड़कता रहेगा।

आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपने सुना श्री 420 आवारा और मेरा नाम जोकर फिल्म के गाने। आवाज़ मुकेश की थी, गीतकार थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन था शंकर जयकिशन का। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरू वाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और उनकी समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना भी की है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह को तैयार करना है। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माही, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान,
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
5: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
5: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।
6: हेलो मनभावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
8: जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं, 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ऐसे जादुई कलमकार को जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें आम इंसान की सांसों से जोड़ दिया। एक ऐसा शायर जिसके लफ्जों में कबीर की सादगी भी है और गालिब के दर्शन भी। जी हाँ, आज एक ही गीतकार कार्यक्रम में इस खूबसूरत सफ़र में हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार और शायर पद्मश्री निदा फाजली साहब की।

निदा फाजली साहब, दिल्ली में जन्मे, ग्वालियर में पले बढ़े और अपनी तकदीर और लफ्ज़ों की पोटली को लेकर मुंबई आ गए। मुंबई के चौल में कई साल संघर्ष किया, लेकिन जब उनकी कलम की गूंज हिंदी सिनेमा तक पहुंची तो हर कोई उनका कायल हो गया।

भले ही साल 2016 में निदा फाजले साहब इस नासवर संसार को छोड़कर चले गए हों, लेकिन अपनी गज़लों, नज़मों और गीतों के रूप में वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुन रहे थे एक ही गीतकार निदा फाजले की रचनाएं, और इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं आप तो ऐसे ना थे, आहिस्ता आहिस्ता और हर जाए। आवाज़ें लता मंगेशकर, सुलक्षणा पंडित और हेमलता की थी। संगीत निर्देशन था उषा खन्ना खयाम और राहुल देव बर्मन का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सुरंजना अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं शास्त्रीय संगीत लेकर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे राग कोमल ऋषभ असावरे पर आधारित ख्याल गायन उस्ताद आमिर खान से।

Sa da da da ma ba ma sa ba ma ma ga re da.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग कोमल शबसावरी पर आधारित ख्याल गायन उस्ताद आमिर खान से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आओ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीइंग डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज बेहतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और हिजबुल्ला लेबनन में संघर्ष रोकने पर सहमत। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मामला भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमेरिका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
0: बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया और पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए संवाद के पहले संस्करण के बाद से बढ़े परामर्श और सहयोग पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को नवीनीकृत और सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रधानमंत्रियों की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इजराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनन में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने प्रेस कार्यालय को गोपनीय और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब पत्रकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पेंटागन ने कहा कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप प्रशासन और मीडिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में पेंटागन को कवर करने वाले कई पत्रकारों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: हॉकी में जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड करेगा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। फिलहाल ये श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमरीका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का ये गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत निर्देशन था राहुल देव बर्मन का। अब आइए सुनवाते हैं अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। ये गीत है फिल्म हिना से।

अनवर और सुधा मल्होत्रा का गाया ये गीत आपने सुना फिल्म प्रेम रोग से। संतोष आनंद की रचना थी, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अब आइए सुनवाते हैं नदीम श्रवण का संगीतबद्ध, समीर का रचा ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बेवफा फिल्म से।

और अब लीजिए सुनवाते हैं चलते चलते फिल्म का ये गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में शब्दकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं जतन ललित।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनवाते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया उमराव जान फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फिल्म अमराजान के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

Seafood. कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हैं, अच्छे अंक, सफल कैरियर, खुशहाल परिवार और सम्मान से भरा एक जीवन, है ना। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं और वो है अनुशासन, जो हमारी पूरी जिंदगी को बना सकता है। अनुशासन सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों के सही होने में छिपा होता है। इसकी अनुपस्थिति धीरे धीरे जिंदगी में दिखने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। जब हम अनुशासन में नहीं रहते तो पूरा दिन बिना किसी दिशा के गुजरता है। देर से उठना, काम को टालना, योजना के बिना दिन बिताना, ये सब धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है। शुरुआत में ये सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ ये हमारी ऊर्जा, सेहत और सोच पर भी असर डालता है। हमारा मन जो है वो भटकने लगता है, ध्यान कम हो जाता है और हम हर काम में पीछे रह जाते हैं। एक तरह से हम अपनी ही क्षमता को खुद कम कर देते हैं। घर में अव्यवस्थित ढंग से रहने और देर से उठने की आदत इंसान के सामाजिक जीवन पर भी असर डालती है। श्रोताओं, ऐसे लोग अक्सर समय की कद्र नहीं कर पाते, देर से पहुंचते हैं या वादे निभाने में पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोग दोस्त, परिवार और समाज में इनकी छवि एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में बन जाती है। बिखरा हुआ कमरा, अव्यवस्थित टेबल, चीजों का अपनी जगह पर न होना, ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि इंसान की सोच और आदतों का प्रतिबिंब है। पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। जब परिवेश साफ और व्यवस्थित होता है तो मन भी शांत और सकारात्मक रहता है, है ना श्रोताओं। लेकिन अनुशासन न होने से ये संतुलन बिगड़ जाता है और हम अंदर से भी अस्थिर महसूस करते हैं। जब हम आज अपने समय और काम को गंभीरता से नहीं लेते तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अनुशासन सिखाता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सफलता है। तो अव्यवस्थित रहन सहन भले ही आराम और सुकून देता लगे, लेकिन अनुशासन का ये अभाव कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारी जिंदगी की रीढ़ है, वो है अनुशासन। इसके बिना हम दिशा खो देते हैं और इसके साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अनुशासन से उलझी हुई जिंदगी को सुलझा लीजिए।

श्रोताओं, इन दिनों साइबर ठगों के सबसे आसान टारगेट में बने हुए हैं बुजुर्ग। अपना शिकार साइबर ठग बुजुर्गों को इन दिनों बना रहे हैं। तकनीक की सीमित जानकारी का फायदा उठाकर ठग बुजुर्गों को आसानी से अपने जाल में फंसा रहे हैं। जिले में साइबर थाना गठन के बाद 2018 से अब तक 600 साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 324 मामले यानी करीब 54% बुजुर्गों के ठगी के सामने आए हैं। साइबर अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक कर्मचारी, टेलीकॉम कंपनी प्रतिनिधि या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। केवाईसी अपडेट, पेंशन बंद, सिम ब्लॉक, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश स्कीम जैसे बहानों से ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। साइबर पुलिस के अनुसार बुजुर्ग अनजान कॉल पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जटिल प्रक्रिया नहीं समझ पाने के कारण आसानी से ठगी का शिकार बन जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए सावधानी जरूरी है। सबसे पहले अनजान लिंक या अटैचमेंट कभी भी न खोलें। ओटीपी या पासवर्ड किसी से भी शेयर न करें। ट्रैप से बचने के लिए सोशल मीडिया पर अजनबियों से ज़्यादा बातचीत या पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें। बैंक अकाउंट की सुरक्षा के लिए दो चरण प्रमाणीकरण चालू रखें। मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें और नियमित रूप से ट्रांजैक्शन को जो है वो चेक करते रहें। ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। एक बार फिर से सुन लीजिए श्रोताओं, ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। तो हमारे बुजुर्ग श्रोता, अनजान लिंक पर क्लिक करने और स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने से बचिए।

श्रोताओं, अमूमन हम सभी के घर के आंगन में तुलसी का एक छोटा सा पौधा रहता ही है ना। तुलसी यानी आंगन का अमृत। तुलसी को मदर मेडिसिन ऑफ नेचर और जीवन के लिए अमृत कहा जाता है। ये हमारी जीवन का हिस्सा है। क्यों तुलसी हमारी संस्कृति के जड़ों में इतनी गहराई तक समाई हुई है, इसके गुणों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दरअसल तुलसी शरीर को डिटॉक्स करती है। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट है। कृष्ण तुलसी में ये क्षमता अधिक होती है। ये शरीर को डिटॉक्स करती है, साथ ही ये खांसी, अस्थमा, बुखार, आँखों की समस्या और अपच से भी बचाती है तुलसी। तुलसी शरीर के ऊतकों को होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति को कम करती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का रसायनों के साथ रिएक्शन चलता रहता है अंदर। इससे शरीर बदलता है और उम्र बढ़ी हुई दिखने लगती है। तुलसी इस शारीरिक तनाव और जैव रासायनिक मापदंडों को सामान्य करती है। तनाव को कम करके मस्तिष्क को बेहतर प्रतिक्रिया के लिए तैयार करती है। खराब आहार, आलस्य और मानसिक तनाव से मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है। मेटाबॉलिक स्ट्रेस के कारण मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के साथ हार्ट संबंधी बीमारियों का भी खतरा बना रहता है शरीर में। तुलसी मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करती है। हाई ग्लूकोज से हमारी पाचन क्षमता को होने वाले नुकसान को कम करके लिवर और किडनी को सेहतमंद रखने में सहायक है तुलसी। तुलसी डिप्रेशन और स्ट्रेस दूर करती है। नींद की समस्या, भूलना या थकावट जैसे लक्षणों में सुधार करती है तुलसी। तुलसी पुदीना यानी परिवार का पौधा ये सब है। विटामिन के भरपूर होता है तुलसी में। हार्ट और हड्डियों के लिए अच्छा होता है तुलसी। विटामिन ए और सी के अलावा आयरन, जिंक और कैल्शियम भी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कुछ पेड़ पौधे रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ये रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी, पीपल, नीम ऐसे ही पेड़ पौधे हैं। तो तुलसी अमृत के समान औषधि है, जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज से ही हर रोज नियम बना लीजिए कि सुबह उठकर खाली पेट तुलसी का सेवन अवश्य करेंगे।

0: फिल्म का नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की। आवाज़ लता मंगेशकर की थी, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत बज गया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं अनिबा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, दिन की 11:34 रहे हैं। श्रोताओं, आज है सिनेमा के इतिहास के सबसे महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर की पुण्यतिथि। उन्हें हिंदी सिनेमा के महानतम शोमैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश और बेहतरीन संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे। महान अभिनेता राज कपूर 1930 के दशक में महज एक क्लैब बॉय और बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया था। 1948 में मात्र 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी आर के स्टूडियो की स्थापना की। 1951 में आई उनकी फिल्म आवारा और 1955 की फिल्म श्री 420 ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। आवारा फिल्म और इसके गाने तत्कालीन सोवियत संघ और चीन सहित कई देशों में आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी अन्य सदाबहार फिल्मों में बरसात, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें 1987 में नवाजा गया। 2 जून 1988 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। राज कपूर अपने पीछे एक गहरी विरासत

मेरा नाम जोकर, इसी फिल्म का गाना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। गीत रचना शैलेंद्र की थी और संगीत बज गया था शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, आज है संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन। भारत के सबसे महान और प्रभावशाली संगीतकारों में गिने जाते हैं संगीतकार इलैयाराजा। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत में ऐसी क्रांति लाई जिसने दक्षिण भारतीय

सिनेमा ही नहीं पूरे देश के संगीत को प्रभावित किया। उनका जन्म 2 जून 1943 को पनयपुरम में हुआ। बचपन से ही लोक संगीत और वाद्य यंत्रों में उनकी रुचि थी। उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया और बाद में उसे भारतीय रागों के साथ अनोखे ढंग से जोड़ा। उनके गीतों में स्ट्रिंग्स, बांसुरी, गिटार और अनेक वाद्य यंत्रों का संतुलित प्रयोग मिलता है। प्रेम, भक्ति, विरह और प्रकृति पर आधारित गीतों में उनकी धुनें विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती हैं। उन्होंने हजारों गीतों और सैकड़ों फिल्मों में संगीत दिया। 1000 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत रचना की उन्होंने। 7000 से अधिक गीतों की रचना की। कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें इसे ज्ञानी का भी उपाधि मिला। तमिल में इसे ज्ञानी का अर्थ है संगीत का ज्ञानी। ये उपाधि उन्हें उनकी असाधारण संगीत प्रतिभा और नवाचारों के कारण मिली। इलैयाराजा का प्रभाव बाद के संगीतकारों पर गहरा रहा, जिनमें ए.आर. रहमान सहित अनेक प्रसिद्ध संगीतकार शामिल हैं। आज भी उनके गीत भारत और दुनिया भर के तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सहित हिंदी भाषी श्रोताओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय है।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा ये गाना। सुरेश वाडकर की आवाज़ में फिल्म का नाम था सदमा। श्रोताओं, आज है निर्माता, निर्देशक और लेखक मणिरत्नम का जन्मदिन। दक्षिण भारत के एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ मणिरत्नम का। असली नाम गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम था। घर में फिल्मों का माहौल जरूर था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कहानीकारों में गिने जाएंगे। बचपन में वे बहुत शांत स्वभाव के थे। किताबें पढ़ना, लोगों को ध्यान से देखना और छोटी छोटी बातों को महसूस करना उन्हें पसंद था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक नौकरी भी की। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये साधारण युवक आगे चलकर पर्दे पर ऐसी कहानियां रचेगा जिन्हें लोग वर्षों तक याद रखेंगे। एक दिन उनके भीतर छिपा कलाकार अचानक जाग उठा। उन्होंने तय किया कि जिंदगी सिर्फ दफ्तर की कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बनी है। वे फिल्मों की दुनिया में उतर गए। शुरुआत आसान नहीं था। शुरुआती फिल्मों में संघर्ष था, असफलताएं थी, लेकिन उनकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। धीरे धीरे उनकी कहानियां लोगों के दिल तक पहुंचने लगी। उन्होंने प्यार को सिर्फ गीतों और मुस्कानों में नहीं दिखाया, बल्कि रिश्तों की खामोशी, दर्द और टूटने को भी महसूस कराया। उनकी फिल्मों में बारिश भी कहानी कहती थी, हवा भी भावनाएं लेकर चलती थी और संगीत आत्मा को छू जाता था। फिर आई ऐसी फिल्में जिन्होंने उन्हें नई पहचान दी। फिल्में थी रोजा, बॉम्बे और दिल से। इन फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि देश, समाज, प्रेम और इंसानी भावनाओं की गहराई थी। उनकी फिल्मों का संगीत जब A.R. रहमान के सुरों से मिला, तब भारतीय सिनेमा को एक नया जादू मिला। दोनों की जोड़ी ने ऐसे गीत दिए जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। मणिरत्नम की खास बात ये रही कि उन्होंने कभी शोर मचाकर कहानियां नहीं सुनाई। उनके किरदार आंखों से बातें करते थे। उनकी फिल्मों में प्रेम होता था, लेकिन उसके साथ संघर्ष भी होता था। राजनीति होती थी, लेकिन इंसानियत उससे बड़ी दिखाई देती थी। सफलता मिलने के बाद भी वे शांत रहे। न ज्यादा दिखावा, न बड़े बड़े बयान। वे बस अपनी कहानियों के जरिए दुनिया से बात करते रहे। यही कारण है कि आज उन्हें सिर्फ निर्देशक नहीं बल्कि भावनाओं का चित्रकार माना जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने अक्सर चुप रहने वाले लोगों की आंखों में सबसे ज्यादा गहरे होते हैं, और जब वही सपने मेहनत से जुड़ जाते हैं तब वे इतिहास बना देते हैं।

बॉम्बे फिल्म का गाना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे चित्रा की आवाज में। गीतकार थे महबूब, संगीतकार एआर रहमान। चलते चलते आज की मौसम की जानकारी हम आपको दे दें श्रोताओं, दिन में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आज के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं रुस्तम फिल्म का गाना आतिफ असलम की आवाज़ में। बोल मनोज मुंतशिर के हैं और संगीत से सजाया है आरकू ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का समय गीतों के साथ बातों के साथ पंख लगाकर उड़ गया है ना। कार्यक्रम में फिर किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। हमारे से सभा में दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद

0: शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के चार मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, किसी से नाराजगी जाहिर करने का हमारा अपना ठेठ भारतीय तरीका है, रूठ कर चुप्पी साध लेना। किसी से असहमत होकर उसके गलत बर्ताव के कारण या उसके जरिए किसी किस्म के नुकसान को सहकर नाराज हो जाना गलत नहीं है, लेकिन अबोले को सही नहीं माना जा सकता। अबोला पुल के अभाव को कहते हैं। जहाँ पुल नहीं वहाँ खाई होगी, कोई तैने करेगा तो दूरियाँ तो बनी रहेंगी, है ना।

श्रोताओं, मोहब्बत में रूठ जाना और फिर मान जाना आम बात है। इससे आपसी संबंधों में गहराई बढ़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई रूठा हुआ अजीज जल्दी से मान जाए, तो उन्हें ये गीत सुनाकर मनाइए।

0: रूठना मनाना तो एक मजबूत रिश्ते की निशानी होती है, है ना। अगर साथी नाराज हो जाए तो उसको कैसे भी करके मना लेना ही चाहिए।
1: मैं लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रह

अब तो उसका रूठना भी भाने लगा है, अब तो उसका रूठना भी भाने लगा है, अब तो उसकी हर अदा पर प्यार आने लगा है।

श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था रूठना। रूठना शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी कोरा कागज, जो जीता वही सिकंदर, आरजू, मजबूर और 1942 आ लव स्टोरी। इन गीतों के लिए आवाज़ें थी लता मंगेशकर, जतिन पंडित, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और कुमार सानू के। गीतकार थे एम जे हशमत, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, आनंद बख्शी और जावेद अख्तर। संगीत से सजाया था कल्याण जी, आनंद जी, जतिन ललित, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राहुल देव बर्मन ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ।

श्रोताओं, हमारे इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दिन के 1:20 पर और दिन के 2:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय है दिन के 3:00। 3:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार होंगे जगन्नाथ राय। समय होगा दिन के 3:45।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, पहले लीजिए सुनिए उस्ताद आमिर खान का ख्याल गायन, राग है भटियान।

आप सुन रहे थे राग भटियात में उस्ताद आमिर खान का ख्याल गायन। कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं लीजिए सुनिए विदुषी बेगम अख्तर का ठुमरी गायन।

दिन के 3 बजे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तीन बजकर 30 मिनट का समय होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे KS गोपाल कृष्ण का वायलिन वादन और पंडित सीआर व्यास का ठुमरी गायन। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपनी रांची केंद्र से लेकर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
2: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa, Paul Mashatile, in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Muhammad Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. Intelligence was collected about Muhammad Sheikh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for re-evaluation of answers has been made live from today and will remain open till the 6th of June. The CBSE said the facility can only be availed by the students who have obtained scanned copy of their evaluated answer books. The board stated that Aadhaar verification has been included for security reasons. For children who do not have Aadhaar, the parents, relatives or guardians' Aadhaar details can be used. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD said coastal Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha, Rajasthan and West Madhya Pradesh can experience thunder squall with wind speed reaching 50 to 60 kilometers per hour. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttarakhand, West Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Similar conditions are likely to prevail over Konkan and Goa, Lakshadweep, Maharashtra, Rayalaseema, Saurashtra and Kutch, Telangana, the Andaman and Nicobar Islands and Himachal Pradesh. Benchmark domestic equity indices were trading on a negative note in afternoon trade today. The Sensex fell 81 points to 74,186, while the Nifty dropped 44 points to 23,338 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये देश के विकास के लिए सभी समाज का आवश्यकता है। देश का सामग्रिक विकास तब कहला जाएगा जब सभी स्तर के बच्चे, सभी स्तर के समाज के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली। लेकिन हम जो बड़े बन जाते हैं, शहर में रह जाते हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना अतीत को भूल जाते हैं। अतीत कभी भूलना नहीं।
0: झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एमओयू में शामिल होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एमओयू कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने विभाग की बकाया राशि भुगतान की भी उम्मीद जताई।
2: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में आज 2 से 3 बजे तक के बीच मीटिंग है। झारखंड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के साथ एमयू होना है, जिसमें झारखंड जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर के उसमें एमयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बेहतर रूप से नल जल योजना को धरातल पर कैसे चालू किया जाएगा, जो बकाया राशि है आगे मिलने की संभावना है एमयू के पश्चात। अभी अगर आप देखेंगे 6,207 करोड़ रुपया अभी बकाया है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। राजमहल विधायक एमटी राजा ने राजमहल और उधवा प्रखंड में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें डीप बोरिंग, जल मीनार, तालाब में सीढ़ी घाट, सार्वजनिक भवन और पोखर का सौंदर्यीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पिछले 3 दशकों से उपेक्षित इलाकों का भी विकास हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना के मद्देनजर बूथ से पंचायत तक संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 15 जून तक हर बूथ पर BLA 2 और 10 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 4 जून तक चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में संगठनात्मक बैठकें होंगी। वहीं रांची जिले में 8 प्रखंडों के लिए केंद्रीय व जिला संयोजक मंडल सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 74,085 पर, जबकि निफ्टी अंक लुढ़क कर 23,302 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर पुलिस ने उलीडी थाना क्षेत्र में हुए विकास सिंह हत्याकांड का खुलासा करते

0: वे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
1: ओलीडी थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह 25 वर्ष जो ओलीडी के रहने वाले थे उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी बनाई गई, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकारी है।
0: झारखंड वन विभाग 1 से 5 जून तक पर्यावरण सप्ताह मना रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है।
2: एक सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क में वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया प्लास्टिक रिमूवल के लिए। वहाँ से कल हम लोग हॉरहाप में करने जा रहे हैं, वहाँ पे पक्षियों के भी हम लोग वॉचिंग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हैं और वो कैसे हम लोगों के बायोडायवर्सिटी के लिए यूजफुल है, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा।
0: गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद, जमुआ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, गिरिडीह महापौर, पर्यटन मंत्री के प्रतिनिधि और कई विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले के अधिसूचित पर्यटन स्थलों की स्थिति और पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक मंजू कुमारी ने बताया कि 20 श्रेणी के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कंसल्टेंट के जरिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। जो पर्यटन स्थल अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं उनके लिए भी दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा।
3: पर्यटन विभाग साहब की अध्यक्षता में मंदिर में तत्काल बोला गया शौचालय 2 यूनिट का, उसके बाद पानी का व्यवस्था, उसके बाद उसका बैठने के लिए आरसीसी बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो जलीय शिव मंदिर है हमारे मिर्जागंज में, नाली का पानी है किस तरह से उसको मतलब की निकाला जाए उसके लिए भी डीसी साहब ने आश्वासन दिए है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटानगर बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, एक समय की बात है, भारतीय सिनेमा में एक ऐसे कलाकार का उदय हुआ जिसने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं और संगीत का उत्सव बना दिया। उनका नाम था राज कपूर।

श्रोताओं, राज कपूर को भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मधुर और यादगार संगीत था। वे मानते थे कि फिल्म का संगीत उसकी आत्मा होती है, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम किया।

महान अभिनेता राज कपूर की फिल्मों में शंकर और जयकिशन की संगीतकार जोड़ी ने अनेक अमर धुनें दी। वहीं गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भावपूर्ण गीत लिखे। इन गीतों को स्वर दिया महान गायक मुकेश ने, जिनकी आवाज को लोग राज कपूर की पहचान मानते थे।

आवारा फिल्म का गाना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। जब आवारा फिल्म आई तो उसका गीत आवारा हूँ देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद फिल्म श्री 420 का गीत मेरा जूता है जापानी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इन गीतों ने भारत की संस्कृति और आम आदमी की भावनाओं को दुनिया तक पहुँचाया।

0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता SMS सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम वक्त एक छोटे से अंतराल का अभी हाजिर होते हैं, बने रहिए 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं महान अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर की फिल्मों की कहानी। महान अभिनेता राज कपूर की फिल्मों में संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम भी था। संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों के गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आइए सुनते हैं संगम फिल्म का ये गाना।

राज कपूर ने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उनकी फिल्मों के गीत समय की सीमाओं को पार कर आज भी सुने जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सिनेमा की समृद्ध संगीत परंपरा से परिचित कराते हैं। आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का ये गाना।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
1: श्रोताओं, राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता और निर्देशक नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जिन्होंने फिल्म संगीत को कहानी की आत्मा बना दिया। इसलिए उनका नाम भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। भारतीय सिनेमा के महान शोमैन राज कपूर जी को विनम्र श्रद्धांजलि।

आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी अनाड़ी, आह, आवारा, श्री 420, संगम, चोरी चोरी और धर्म करम। आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की। गीतकार थे शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और मजरू सुल्तानपुरी। संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन और राहुल देव बर्मन ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे अभिनेता राज कपूर अभिनीत फिल्मों के गाने। फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं 2:30 पर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहाँ से आप सुनेंगे 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: party. The visit seeks to initiate party-to-party engagement between RSP and BJP and provide an opportunity for exchange of views on organizational practices, democratic processes, and people-centric political outreach. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh during the day. While heavy rainfall will occur over interior Karnataka, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Haryana, Chandigarh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand, Gujarat, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana and West Uttar Pradesh for the next 2 to 3 days. Hot and humid weather conditions will prevail over entire northeast, including coastal Andhra Pradesh, Odisha and sub-Himalayan West Bengal today. On to sports and women's cricket, the third and final T20 international of the series between India and England will be played at Taunton in England tonight. The match will begin at 11 p.m. IST. The series is level with India winning the first match in Chelmsford by 38 runs and England levelling the series with a 26-run victory in Bristol. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamigahara, Japan. Captain Ketan Kushwaha scored in the third and the 36th minute. Varinder Singh and Shah Rukh Ali scored the other two goals. Korea's lone goal came through Captain Yoon Jae-yok. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Suryakant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर

0: प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में

0: इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
4: हेलो डॉक्टर,
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, जब दिल की धड़कनें एक ही सुर में गूंज उठती है तब मोहब्बत का संगीत शुरू होता है।

गीत लिखा था गोविंद मुनिस ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हर कहानी का एक पल होता है और हर मोहब्बत का एक गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे इंतकाम फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। कार्यक्रम का अगला गाना संगीत फिल्म से हमने लिया है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ों में। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीत से सजाया है आनंद मिलन ने। तेरी मुस्कुराहट से शुरू हुआ ये सफ़र अब संगीत बनकर दिल में बस गया है।

कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे दिले नादान फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था नक्शलाल पुरी ने और संगीत से सजाया था खयाम ने। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 2:55 हुआ चाहते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जीकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पांडेडीह के किसानों का कहना है कि समय पर मिलने वाली 2,000 रुपए की राशि से उन्हें खाद बीज खरीदने में मदद मिल रही है। इस योजना ने महाजनों पर उनकी निर्भरता खत्म कर किसानों का आत्मबल मजबूत किया है।
2: वर्मा ग्राम पांडे डिग्रीडी से हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के लिए 6,000 रुपये देते जो प्रत्येक माह 2,000 रुपये करके मिलती है।
3: अशोक वर्मा पंचायत पांडेडी प्रखंड गिरिडीह जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2,000 रुपये करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं। 21वां किस्त भी मिला और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे माफिया और अधिकारी एसीबी की मदद से भी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता की कमाई लूटने वालों की असली मंजिल जेल होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां में जनगणना 2027 के कार्य में

0: लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ आरोप पत्र गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर जिला जनगणना कोषांग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। हजारीबाग के नोनिया बेड़ा में सीसीएल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला उत्खनन के 4 मुहानों को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोयला तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और अवैध कारोबार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस ने गोलमोरी गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त लोडेड पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि नामदा बस्ती में दहशत फैलाने और रंगदारी के मकसद से मुख्य साजिशकर्ता विकास सिंह गिल ने इस घटना को अंजाम दिया था।
1: तो इसमें घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी बनाई गई जिसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करके टोटल 4 अपराध कर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है विक्की सिंह उर्फ कुंडी। बाकी 3 अपराध कर्मी विक्की सिंह, रविंद्र कुमार ठाकुर, बलराम सिंह उर्फ छोटू और अमन सिंह को आज हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं।
0: देवघर में 31 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मेला फेस रिकॉग्निशन और एआई तकनीक से लैस होगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर पूरी की जाएंगी। जमशेदपुर में आयोजित 15वीं झारखंड राज्य सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएससीपीएस के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रांची के प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने भी कांस्य पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
0: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में

0: पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय है जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के

0: शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते।

0: सकते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
1: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
2: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो,
7: अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
9: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
10: लुई पाश्चर
11: सर,
10: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
11: कहिए सर।
10: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
4: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
10: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात यह है इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
5: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
5: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
5: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
5: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
5: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
11: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूं?
4: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
5: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
12: सर
11: सर ये टेलीग्राम।

0: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
1: क्या हुआ सर?
0: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
1: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
2: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: आप
4: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
4: मेरा
0: अच्छा,
4: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया।

0: पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हुआ जाते हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए के एस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन, राग है सिंधु भैरव।

आप सुन रहे थे राग सिंधु भैरव में के एस गोपाल कृष्णन का वायलिन वादन। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए पंडित सी आर व्यास का ठुमरी गायन।

शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। 5:30 का समय है श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम कल कारखाने का।

लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार है जगन्नाथ राय।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। समाचार मुख्यांश के बाद शाम 4:02 पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आइए आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं और सुनते हैं समाचार मुख्यांश। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। एडीजी मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों के पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। एडीजी ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय की उपस्थिति में नवनियुक्त उप परिवहन आयुक्त राजेश साहू ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान पदाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपे। आयुक्त ने नए अधिकारी को पारदर्शिता के साथ राजस्व संग्रहण बढ़ाने और जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवरिया पथ सुगम बनाने और शेड लगाने के साथ ही इस बार मंदिर परिसर के 12 बाहर करीब 1300 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित रखने में बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक 21.6 मिलीमीटर वर्षा रांची में हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:02 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार श्रोताओं।

बरसात की एक रात, इसी फिल्म का गाना श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा हुआ, आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है नमकीन।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं,

बदलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हाँ वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे निदा फाजली का लिखा ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम था स्वीकार किया मैंने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता ऐसे में सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत जारी रहेगा शाम के 5 बजे तक। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कफील अजार का लिखा ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में कर्तव्य फिल्म से।

आप सुन रहे थे लम्हे फिल्म का ये प्यारा सा गाना। हरिहरन की आवाज़ में गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था शिव हरि ने। कार्यक्रम में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्सन बॉम्बे।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

तुमको न भूल पाएंगे। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, सोनू निगम की आवाज थी, बोल थे जलेश राशिद के और संगीत साजिद वाजिद का था।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में आपने सुनाया फिल्म ये मोहब्बत है का ये गीत। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था आनंदराज आनंद ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

हम हैं राही प्यार के। इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें थी, समीर के बोल थे और संगीत था नदीम श्रवण का। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का।

जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाजें थी। फिल्म था मिस्टर एंड मिसेस माही। ये गीत आपने सुना। इस गीत के बोल कौसर मुनीर ने लिखे थे और धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में मुस्कान फिल्म का ये गीत।

मुस्कान फिल्म का ये गीत आपने सुना, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजें थी। गीत के बोल समीर ने लिखे थे और संगीत था निखिल विनय का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से सीआरपीएफ हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार सीआरपीएफ हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह घोटाला हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हवाले से कहा कि बड़ी राशि का सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा की मोतिया ओपी पुलिस ने नशामुक्त अभियान के तहत छापेमारी कर 2.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर खटनई शिव मंदिर के पास यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरायकेला खरसावा के कपाली में रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग में एक जमीन मालिक घायल हो गया है। चार दीवारी निर्माण के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने तीन राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी की रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। आइए अब सुने हमारे युवा साथियों को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जमशेदपुर और मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक झा। आज हम चर्चा करेंगे वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत का द्वार विषय पर और जानेंगे कि किस प्रकार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर हम देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। साथ ही बात करेंगे माई भारत नेशन फर्स्ट चैलेंज अभियान की, झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेषताओं की, समसामयिक गतिविधियां तथा कुछ रोचक जानकारी भी। नीति आयोग द्वारा अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल को आधिकारिक तौर पर 13 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्वदेशी उत्पादों की पहचान और प्रचार के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है। वोकल फॉर लोकल पहल के तहत लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करने का संकल्प है। लोगों को सतत विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर करना इसका लक्ष्य है। इस पहल के तहत 500 महत्वाकांक्षी ब्लॉकों के स्थानीय उत्पादों को मैप किया गया है और आकांक्षा ब्रांड के तहत समेकित किया गया है। आकांक्षा एक अम्ब्रेला ब्रांड है जिसे कई उप ब्रांडों में विस्तारित किया सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनाने की क्षमता है। इन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए आकांक्षा ब्रांड नाम के तहत एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर एक समर्पित विंडो स्थापित की गई है। आइए वोकल फॉर लोकल पर युवा आशीष सिंह ठाकुर के विचार सुने।
1: नमस्कार, मैं आशीष सिंह ठाकुर। आज मैं वोकल फॉर लोकल विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वोकल फॉर लोकल केवल एक अभियान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यदि हम अपने देश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें तो स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। जब हम किसी स्थानीय उत्पाद को खरीदते हैं तब हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि किसी कारीगर, किसान, महिला उद्यमी या छोटे व्यापारी के सपनों और परिश्रम का सम्मान भी करते हैं। हमारा यह छोटा सा सहयोग देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं है बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचान कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है। आज भारतीय स्टार्टअप हस्तशिल्प, खिलौना उद्योग, मोबाइल निर्माण तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। एक युवा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं स्थानीय उत्पादों का उपयोग करूं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूं तथा भारतीय नवाचारों और प्रतिभा पर गर्व करूं। यदि देश का प्रत्येक नागरिक लोकल के लिए वोकल बने तो भारत केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र नहीं बल्कि एक सशक्त वैश्विक उत्पाद शक्ति के रूप में उभरेगा। आइए हम सभी संकल्प लें, जहां भी संभव हो स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय उद्यमों को प्रोत्साहित करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: साझेदार ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग को सुगम बनाने, संपर्क स्थापित करने, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, प्रलेखन और कौशल संवर्धन आदि के लिए तकनीकी और परिचालन सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म स्पेशल पर्पस व्हीकल के स्वामित्व में है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर लाभकारी कंपनी है। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान 12 मई 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किया था। इसका सरल अर्थ है अपने स्थानीय उत्पादों को न केवल खरीदना बल्कि उनका खुलकर प्रचार भी करना। सदियों पुरानी गांधीवादी स्वदेशी की सोच को आधुनिक वैश्विक बाजार के ढांचे में ढालकर भारत को आर्थिक रूप से संप्रभु बनाना ही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। आज यह अभियान भारतीय अर्थव्यवस्था के कोने कोने में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। खादी अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा वैश्विक सिंबल बन चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार खादी व विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में व्यापक रोजगार सृजन हुआ है और इस सेक्टर ने लगभग 2.04 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। लोकल से ग्लोबल, इस अभियान का अंतिम चरण स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता को इस स्तर पर ले जाना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। मसाला, चाय, आयुर्वेद और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वोकल फॉर लोकल अपने देश के हुनर, श्रम और पूंजी का सम्मान है। जब एक आम भारतीय किसी स्थानीय कुम्हार, बुनकर या छोटे स्टार्टअप से सामान खरीदता है तो वह सीधे तौर पर देश की जीडीपी और रोजगार में योगदान दे रहा होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काफी प्रासंगिक विषय माई भारत नेशन फर्स्ट चैलेंज के बारे में। काफी लोग जानते होंगे माई भारत एक स्वायत्त सरकारी संगठन है जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी। इसका मुख्यालय जीवनदीप बिल्डिंग जनपद नई दिल्ली में स्थित है। माई भारत पोर्टल पर 18 मई से 30 जून तक नेशन फर्स्ट चैलेंज लाइव है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। चलिए बताते हैं कैसे इस अभियान से जुड़े। सबसे पहले myBharat.gov.in पर जाएं, श्रेणी का चयन करें, अपनी रुचि और भागीदारी के आधार पर दी गई 5 श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, खाना पकाने के तेल के उपयोग में कमी, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, उर्वरकों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, स्थानीय पर्यटन के लिए मुखर, प्रत्येक श्रेणी में अपनी भागीदारी दर्शाने वाली अधिकतम 10 तस्वीरें या 4 वीडियो अपलोड करें, अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करें, हर स्वीकृत तस्वीर के लिए 10 अंक और हर स्वीकृत वीडियो के लिए 20 अंक प्राप्त करें, लीडर बोर्ड बटन में रैंकिंग देखें, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लें। आइए माई भारत झारखंड

0: भारत नेशन फर्स्ट चैलेंज को लेकर के। तो
1: हाँ
0: मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि माय भारत नेशन फर्स्ट चैलेंज जो है ये पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भर जीवन शैली कैसे प्रोत्साहित करता
1: ये देखिए, हमारा युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हमारा माई भारत ऑफिस जो है वो अभी लोगों को, जैसे सिंगल सिंगल गाड़ी में चलते हैं लोग, कि वो शेयर्ड वाले में चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें, ये
0: है?
1: प्रमोट कर रहा है। हम और कैसे जो इन ये कंजप्शन जो है ऑयल का, तेल का, उसको कम कर सकते हैं, उसके बारे में युवाओं के बीच जागरूकता का काम किया जा रहा है। और फिर हम लोग थोड़ा जो कुछ जो हमारा डीजल पेट्रोल को हम लोग ना स्टोर करने के लिए नहीं खरीदें, उसको जितना हमारा डेली का रिक्वायरमेंट है उतना ही लें, ताकि सबको वो जरूरतमंद लोगों को मिल सके। खास करके जो मेडिकल इमरजेंसी होता है, इस तरह के लोगों को अगर सभी लोग वैसे उसको इकट्ठा करने, जमा करने के उद्देश्य से लेंगे, तो फिर इस तरह का जो इमरजेंसी केसेस के लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो हम इस तरह के, चूंकि हमारा अभी जो देश है वो इस परिस्थिति से, इस समस्या से जूझ रहा है, तो लोगों को जागरूक करना है, युवाओं को
0: जी,
1: नेशन फर्स्ट, हम पहले
0: नेशन फर्स्ट
1: सभी
0: चैलेंज
1: के बारे में।
0: झारखंड के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा?
1: ये देखिए, जब हम अगर समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए भी सोचकर कुछ भी काम करते हैं, तो उससे सबका भला होता है, और अगर हमारे समाज का भला होता है, तो चूंकि समाज को मिलाकर ही राष्ट्र बनता है हमारा, तो हम अगर समाज के लिए सोच रहे हैं, बाकी हम अपने पड़ोसी के लिए, बाकी लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारा देश के लिए भला होगा, और वो राष्ट्र निर्माण में हमारा वो अहम भूमिका निभाएंगे, हमारे झारखंड के युवा।
0: जी, आखिरी सवाल कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए माय भारत की क्या रणनीति है ताकि वे भी नेशन फर्स्ट चैलेंज जैसे अभियान का लाभ उठा सकें?
1: देखिए, हमारा जो माई भारत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में भी जो हमारे युवा मंडल है, महिला मंडल है, उनके
0: जी
1: माध्यम से काम करते हैं हम लोग, उनके माध्यम से हमारे जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ के युवाओं को हम लोग कवर करते हैं, और हमारा उनके साथ जुड़ाव होता है, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। अगर वो फिजिकली हम उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये सारे जो मैसेजेज हैं, जो हमारा देश अभी जिस समस्या से जूझ रहा है, और उसमें किस तरह हमारे युवा अहम भूमिका, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के या दूरस्थ क्षेत्र के भी जो युवा है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, जिनको हम फिजिकली उनके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो हमारा नेशन फर्स्ट का जो हमारे माननीय मोदी जी का कंपेन है, अभियान है,
0: जी
1: उस पे उनका भी योगदान है।
0: तो आपने सुना माय भारत झारखंड स्टेट डायरेक्टर ललिता कुमारी जी से हुई बात।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: तो अब बात करते हैं, चलिए अब जानते हैं अपने राज्य झारखंड को व उसके कुछ पर्यटन स्थल। पूर्वी भारत का एक भूभाग से घिरा राज्य, घने जंगलों वाला राज्य झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार से घिरा यह राज्य उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हजारीबाग पठार पर स्थित एक शंखवाकार ग्रेनाइट शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1,365 मीटर है, जो जैन और संथाल धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थल है। विश्व प्रसिद्ध सोहराई खोवर चित्रकारी को 2020 में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ। हजारीबाग जिले में प्रचलित भित्तिचित्र या भित्तिचित्रकारी सोहराई खोवर एक कला विधि है। यह कला सोहराई त्योहार से संबंधित है, जो हिंदू त्योहार दिवाली के बाद शरद ऋतु में मनाया जाता है। आजकल सोहराई और खोवर चित्रकलाएं कागज और कपड़े पर भी बनाई जाती है, जो काफी लोकप्रिय है। इस कला शैली की उत्पत्ति पुरापाषाण काल में मानी जाती है। झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन

0: इन कार्यरत झारखंड पर्यटन विकास निगम राज्य भर में पर्यटन संवर्धन और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख करता है। लातेहार जिले में लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाग के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैद्यनाथ धाम, राजरप्पा, जगन्नाथ मंदिर रांची और देवड़ी मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। इटखोरी के बौद्ध सूप 200 ईसा पूर्व के हैं। यह हिंदू, बौद्ध और जैनियों के लिए पवित्र स्थल है। 1947 से 1950 के बीच निर्मित जादूगोड़ा का रंकड़ी मंदिर झारखंड के साथ साथ उड़ीसा, बंगाल और बिहार में भी प्रसिद्ध है। नेतरहाट राज्य का एक हिल स्टेशन है। क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से मशहूर नेतरहाट लातेहार जिले में स्थित एक शांत पहाड़ी इलाका है। 3,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपने घने देवदार के जंगलों, ब्रिटिश काल के आकर्षण और मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति की गोद में शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो टैगोर हिल रांची एक बेहतरीन विकल्प है। झारखंड की राजधानी रांची अपनी सुखद जलवायु और चारों ओर फैले जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। जोन्हा फॉल्स को गौतम धारा भी कहा जाता है। आइए जमशेदपुर के एक युवा से झारखंड पर्यटन पर राय सुने।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम
2: हाय मेरा नाम राज विवेक यादव है और मैं मेरा एज 25 इयर्स है। मैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे विचार से झारखंड केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं बल्कि अपार पर्यटन संभावनाओं का भी केंद्र है। आज जब युवा रोजगार, उद्यमिता और स्थानीय विकास की बात करते हैं तब पर्यटन झारखंड के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकता है। झारखंड को प्राकृतिक ने अद्भुत उपहार दिए हैं। यहाँ के जलप्रपात, घने वन, पहाड़ और वन्य जीव विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। मुंडरू जलप्रपात, दशम जलप्रपात, नेतरहाट तथा बेतला राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थल राज्य की प्राकृतिक पहचान है। इसके साथ ही झारखंड की आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य, लोक संगीत और पारंपरिक जीवन शैली पर्यटकों को एक अलग आयाम प्रदान करती है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को केवल घूमने का नहीं बल्कि सीखने और अनुभव करने का अवसर देती है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी झारखंड की बड़ी भूमिका है। वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ मंदिर, चितमस्तिका मंदिर तथा समेत शिखर जी जैसे तीर्थ स्थल हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं।
0: तो भारत की पहली नियोजित औद्योगिक नगरी जमशेदपुर सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए भी जानी जाती है। मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर बना जुबली पार्क अपनी लाइटिंग और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, जो एडवेंचर के शौकीनों के लिए पसंदीदा जगह है। डिमना लेक तलहटी में स्थित एक खूबसूरत व शांत झील है। माना जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने गिरिडीह स्थित समेत शिखर जी की पावन धरती पर निर्वाण प्राप्त किया था। वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेतला नेशनल पार्क भारत के शुरुआती प्रोजेक्ट टाइगर बाघ अभयारण्यों में से एक है। इसके पास ही ऐतिहासिक पलामू का किला भी स्थित है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में सुधार और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के बाद अब झारखंड वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं समसामयिक गतिविधियों पर। 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड व वेल्स में महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। 11 जून से प्रारंभ हो रहे फीफा विश्व कप का सीधा प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट द्वारा नए लॉन्च किए गए यूनाइटेड 8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Z5 ऐप पर भी उपलब्ध होगी। IIM इंदौर 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर केस स्टडी करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। 6 से 12 जून के बीच पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार करने की संभावना है। 20 जून के बाद लगातार बारिश की संभावना है झारखंड में। देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है शिक्षा मंत्रालय का युवा संगम, जो पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के 5 पिलर्स पर आधारित है। झारखंड के प्रतिभागी मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। CSIR NML जमशेदपुर ई कचड़े से सोना चांदी निकालने के लिए देश भर से 15,000 असंगठित कामगारों को प्रशिक्षित करेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता अभियान IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का शुभारंभ किया। आइए अब एक मनभावन संगीत सुनें।

तो आपने सुना 2004 की फिल्म स्वदेश से संगीत यूं ही चला चल रहा ही, जिसके गायक हैं उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर, संगीत निर्देशक एआर रहमान और गीतकार जावेद अख्तर। चलिए अब कुछ रोचक जानकारी की बात करते हैं। 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2014 में। 1953 में 2 जून को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। आप में से कई लोगों ने एक बेहद लोकप्रिय मुहावरा सुना होगा, 2 जून की रोटी, जिसका अर्थ दिन में 2 समय का भोजन या गुजारे लायक न्यूनतम रोटी है। यह कहावत लोगों के संघर्ष और असल जीवन को दर्शाती है। इसका प्रयोग मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपनी कई कहानियों और रचनाओं में कर चुके हैं। 3 जून से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 1 की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हो रही है, जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। फेज 1 में कुल 250 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। तो आज हमने चर्चा की वोकल फॉर लोकल अभियान की, आत्मनिर्भरता का द्वार, माय भारत नेशन फर्स्ट चैलेंज, झारखंड के पर्यटन स्थल, समसामयिक गतिविधियां और कुछ रोचक जानकारी। सुनते रहें युववाणी, सुनते रहें 102.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी जमशेदपुर।

युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

0: श्रोताओं, बहुत से लोग अक्सर मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं या रुक जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आगे बढ़ने का असली मजा तब है जब रास्ते में मुश्किलें हो और आप उन्हें पार करके मुस्कुराएं। आज का हमारा ये सफर इसी पॉजिटिविटी के नाम, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने और आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं FM के 102.4 MHz पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने में। मैं मंजू आप सबका स्वागत करती हूं आपके इस अपने कार्यक्रम में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, एक दौर था जब महिलाओं के हुनर को सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित समझा जाता था। रसोई का स्वाद हो, सिलाई कढ़ाई हो या हस्तशिल्प, ये सब सिर्फ शौक या पारिवारिक जिम्मेदारी का हिस्सा माने जाते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, आज की नारी ने अपने इसी पारंपरिक हुनर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। घरेलू उद्योग यानी होम बेस्ड बिजनेस आज महिलाओं के लिए सिर्फ समय बिताने का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। अचार, पापड़, मसाले और अगरबत्ती बनाने जैसे पारंपरिक कामों से लेकर आज की महिलाएं होम बेकर, बुटीक ओनर, जूट बैग मेकर और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाने के आधुनिक व्यवसायों में अपनी पहचान बना रही है। तो आप अगर अब ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के लिए घरेलू उद्योग इतना लोकप्रिय और कारगर क्यों साबित हो रहा है, तो इसके पीछे की खास वजह बताते हैं आपको। घरेलू उद्योग महिलाओं को ये आजादी देता है कि वो अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने समय के अनुसार काम कर सके। वहीं इसके लिए किसी बहुत बड़ी दुकान या फिर फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती। महिलाएं अपने घर के एक छोटे से हिस्से से बहुत ही कम पूंजी के साथ इस काम को शुरू कर सकती है। सबसे बड़ी बात श्रोताओं की, जब एक महिला घर बैठे कुछ पैसे कमाती है तो परिवार के फैसलों में उसकी आवाज को एक नया सम्मान मिलता है। वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहती।

श्रोताओं, इस तरक्की के रास्ते को और भी आसान बना दिया है डिजिटल क्रांति ने। आज की महिला सिर्फ अपने मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं, स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके लिए निःशुल्क शोरूम बन गए हैं। घर बैठे बनाए गए सामान की तस्वीरें और वीडियो आज देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के आने से लेन देन भी सुरक्षित और आसान हो गया है। यानी हुनर घर का है, लेकिन बाजार पूरी दुनिया है। महिलाओं के इस जज्बे को पंख देने के लिए सरकार भी लगातार कदम उठा रही है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हार्ट समेत कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को बहुत ही आसान शर्तों पर लोन और ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि सरकार के साथ साथ परिवार का सहयोग भी बेहद जरूरी है। जब एक परिवार

अपने घर की लक्ष्मी के हुनर पर भरोसा करता है और उसे थोड़ा सा प्रोत्साहन देता है तो वो सफलता की नई इबारत लिख देती है। तो श्रोताओं, आज घरेलू उद्योग वाकई महिलाओं की तरक्की का एक नया और सशक्त रास्ता बन चुका है। तो अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है, कोई सपना है, तो झिझक छोड़िए और आज ही एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी तरक्की में ही देश की तरक्की छुपी है। जब आपके हौसलों को पंख मिलते हैं तो फिर जमीन छोटी पड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे आसमान भी आपके कदमों में आ गया हो, बिल्कुल इस गाने की तरह।

हेमा सरदेसाई की आवाज में जयदीप सहनी के लिखे गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म चक दे इंडिया से। संगीत निर्देशन था सलीम सुलेमान का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं कुछ और खास जानकारियों के साथ। जी हाँ, शरीर की व्याधि एवं स्थिति से उत्पन्न दंत समस्याएं और उनका समाधान, इस विषय पर हमारे साथ आज जानकारी साझा कर रहे हैं डॉक्टर बीजू गोपाल और उनसे बातचीत कर रही है मालती चौधरी। तो आइए सुनते हैं ये खास जानकारी।
1: श्रोताओं, दांतों का स्वस्थ होना केवल खूबसूरती के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि शारीरिक स्वस्थता के लिए भी जरूरी है। आज हमने अपने स्टूडियो में दंत चिकित्सक डॉक्टर बीजू गोपाल को आमंत्रित किया है और बातचीत करेंगे शरीर की व्याधि एवं स्थिति से उत्पन्न दंत समस्याएं एवं उनके समाधान विषय पर। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम।
1: डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं शरीर की व्याधि एवं स्थिति से उत्पन्न दंत समस्याओं पर। तो दांत की जो समस्याएं होती हैं, उसे हम सिर्फ दांत की ही समस्या समझते हैं, लेकिन शारीरिक व्याधि और स्थिति से इसका क्या अभिप्राय है?
2: शारीरिक व्याधि यानी या सिस्टमिक डिजीज जो हमें प्राय होता है, बहुत मनुष्यों में ये आजकल पाया जाता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस या फिर मधुमेह जिसे कहते हैं
1: जी,
2: या फिर कैंसर, हमारे हड्डियों की बीमारी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया, और कभी कभी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संबंधित बीमारियाँ, उससे भी बहुत सारी ओरल या मौखिक बीमारियाँ होती हैं।
1: अच्छा, मतलब कि हम ऐसा न समझें कि दांत की बीमारी एक अलग बीमारी है, बल्कि आपके शरीर में अगर और भी किसी तरह की बीमारी है, जैसे मधुमेह है या आप हार्ट अटैक के मरीज हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, तो इससे भी प्रभावित दांत हो सकता है।
2: जी, इससे प्रभावित दांत भी होता है। दांत को सपोर्ट करने वाले पेरिओडोंटल लिगामेंट्स या ऊतक होते हैं
1: जी,
2: मसूड़े होते हैं, गाल या उसके स्ट्रक्चर्स भी इफेक्ट होते हैं।
1: तो किस किस तरह का प्रभाव होता है इसमें बीमारी के कारण? जो
2: बीमारी के कारण अब मसूड़ों में सूजन आ सकता है, मवाद बन सकता है मसूड़ों में, मवाद का रिसाव हो सकता है।
1: अच्छा।
2: पीले रंग के प्लाक जमा होते हैं, दांत हिलने भी लग सकते हैं, मुंह से लगातार बदबू भी आ सकती है और मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। जी,
1: तो फिर इसे कैसे रोकते हैं? जैसे आपने बताया कि बीमारी से जो समस्याएं होती हैं दांत में
2: जी,
1: तो उसको रोकने का क्या उपाय होता है?
2: उसका रोकने का सबसे पहला उपाय होता है कि जब भी आपको कोई बीमारी हो, सबसे पहले आप अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करें। फिजिशियन आपको डेंटिस्ट के पास रेफर करेंगे। आप डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने से 1 साल में एक बार चेकअप जरूर कराएं। उस चेकअप में भी आपके बहुत सारे बीमारियों का पता चलता है, जैसे कि मुंह में आपको डायबिटीज है या थायराइड है, कि लाल फूले हुए मसूड़े हैं जिनमें ब्रश करते हुए खून निकलता है, पीले रंग का प्लाक जमा हो गया है, मसूड़ों से मवाद निकल रहा है, मसूड़े ढीले हो गए हैं या मसूड़ों में सूजन आ गया है, या दांत हिलने लगे हैं या मुंह से बदबू आ रहा है। आपके डेंटिस्ट इन सब के बारे में आपको बताएंगे और इसका उपचार के बारे में भी आपको सही परामर्श करेंगे, जिससे आपका आगे चल कोई भी बीमारी होने से आप बच सकते हैं।
1: तो हमारे शरीर में समय समय पर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं
2: जी।
1: बाल्यावस्था में कुछ होते हैं, फिर बच्चों में भी दांत की समस्या बहुत पाई जाती है, किशोरावस्था में होता है, युवावस्था में हम आते हैं, तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे भी कुछ इसमें प्रभाव होता है क्या?
2: जी, हार्मोनल चेंजेस में भी हमारे मसूड़ों पर या पेरिओडोंटल स्ट्रक्चर्स या ऊतकों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मसूड़ों में सूजन हो सकता है, मुख में कैविटी बन सकता है, प्लाक जमा हो सकता है, कैलकुलस या हार्ट डिपोजिट्स जमा हो सकता है हमारे दांतों में और मसूड़ों में, जिससे कि मसूड़ों के स्वास्थ्य बुरी तरह वो प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे प्यूबर्टी हो गया या फिर गर्भावस्था हो गया या फिर महिलाओं में मेनोपॉज हो गया, सब में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां मसूड़ों में और मुख में हो सकते हैं। जैसे प्यूबर्टी हो गया, प्यूबर्टी के दौरान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब स्पेशली महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अचानक हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिससे मसूड़ों में से ब्लीडिंग या रक्त का प्रवाह ज्यादा होने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो सकता है, मसूड़े फूल सकते हैं, अगर ब्रश करते हुए उनसे खून भी निकल सकता है।
1: तो अगर ये सब समस्या हो तो उन्हें दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए।
2: एक और बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, जैसे गर्भावस्था में

0: संक्रमण बढ़ जाता है
1: जी,
0: तो इसमें भी मसूड़ों में सूजन आ सकता है। मसूड़ों में एक बीमारी होती है पायोजेनिक ग्रैनुलोमा या फिर एप्युलिस कहते हैं।
1: अच्छा।
0: वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन भी आ सकती है, जिससे कि मुंह हंसने में या फिर मुंह से खून का रिसाव बहुत ज्यादा हो सकता है। और गर्भावस्था में पेरिनेटल डिजीज या ऊतकों में अगर दिक्कत होता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे मिसकैरेज हो गया या फिर प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकता है, बच्चों में वजन कम हो सकता है।
1: अच्छा,
0: ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं। और तीसरा हो गया मेनोपॉज। मेनोपॉज में हार्मोन्स के कमी के कारण मसूड़ों में या मुंह में या दांतों को ज्यादा प्रभावित करता है। इससे मुंह सूख सकता है।
1: अच्छा।
0: मुंह में जलन हो सकता है, जीभ में जलन हो सकता है। साथ ही ईस्ट्रोजन के स्तर घटने से जबड़ों के हड्डियों की डेंसिटी भी कम हो सकती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम लोग बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, कुछ डिजीज के लिए दवाइयां खाते हैं, तो क्या दवाओं का भी असर होता है?
0: जी, दवाओं का भी बहुत असर होता है हम लोग के मसूड़ों पर
1: जी,
0: या फिर पेरिडोन्टियम पर।
1: तो किस तरह का असर होता है इसमें? वही मसूड़ों
0: फूल जाते हैं
1: जी।
0: इसमें एक तरह का फाइब्रस ग्रोथ होता है जो कि नॉर्मल सूजन से अलग होता है।
1: अच्छा।
0: इसमें पेरिडोन्टल ब्रेकडाउन भी हो सकता है जो कि दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कभी कभी इसमें से इतना ज्यादा सूजन मसूड़े फैल जाते हैं, दांतों का रंग बदल जाता है और मसूड़ों का भी रंग बदल जाता है।
1: अच्छा, तो वो रंग किस तरह के होते हैं? क्या ब्लैकिश होते हैं?
0: कुछ ब्लैक हो सकते हैं या फिर पर्पलिश हो सकते हैं, बैगनी कलर के।
1: अच्छा।
0: या लाल हो सकते हैं
1: जी।
0: जैसे कि बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम मिर्गी में, जैसे कि एपिलेप्सी में फेनिटोइन खाते हैं या साइक्लोस्पोरिन लेते हैं या फिर हार्ट डिजीज में या हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं, उनसे मसूड़ों में सूजन आ सकता है। और उनको जिंजाइवल ओवरग्रोथ कहा जाता है, जो कि आप अपने फिजिशियन से परामर्श करके डेंटिस्ट को दिखाएं और हो सकता है आपका दवा बदलने पर ये रुक जाए। अगर नहीं रुकता है तो फिर डेंटिस्ट इसका जिंजाइवल सर्जरी करके हटा सकते हैं।
1: अच्छा, और कैंसर जो बीमारी है, इसमें जो समस्याएं होती हैं दांत को लेकर, वो किस तरह की होती हैं? इसमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं इससे संबंधित?
0: देखिए, कैंसर बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। जैसे बच्चों में सबसे जो बड़ा कारण है मुंह में कोई भी समस्या होने का, वो केमोथेरेपी के कारण सामने आते हैं।
1: अच्छा।
0: और फिर भी मुंह में जैसे म्यूकोसाइटिस हो गया, अल्सर हो या छाले हो गए।
1: अच्छा।
0: कैविटी हो गया, ये सब दांतों में देखने को मिलता है। या फिर मुंह से बहुत बदबू आती है और मसूड़ों से बहुत खून निकलता है। तो कैंसर में कीमोथेरेपी से पहले आपको अपने डेंटिस्ट से एक बार मिलकर दांतों का अच्छा इलाज करा लेना चाहिए, ताकि आगे चल के कीमोथेरेपी के दौरान या कीमोथेरेपी के बाद कोई भी बीमारी ना हो।
1: आपने बीमारी में एक ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया था। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है और ये मुख से इसका क्या संबंध हो सकता है?
0: ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है एक ऐसा रोग जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं
1: जी,
0: हड्डियों का घनत्व या डेंसिटी कम हो जाता है
1: जी।
0: इसमें ऑस्टियोपिनिया भी आती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी आता है, और ये डायबिटीज के बाद सबसे बड़ा वर्ल्ड में दूसरा महामारी एक बीमारी बनता जा रहा है। स्पेशली ये महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में पेरिडोन्टल स्ट्रक्चर के साथ एल्वोलर बोन या दांतों के जबड़ों की हड्डी भी कमजोर होने लगती है, जिससे दांत हिलने भी लग सकते हैं, और या तो पेरिडोन्टल डिजीज या जिसे हम नॉर्मल भाषा में पायरिया कहते हैं, ये भी हो सकता है।
1: पायरिया का क्या क्या लक्षण होता है?
0: पायरिया का पहला लक्षण होता है मसूड़ों में सूजन आना या फिर मुंह से खून निकलना ब्रश करते वक्त।
1: अच्छा।
0: जब ये बढ़ जाता है तो आपका मसूड़ा ढीला होने लगता है, हड्डियों की डेंसिटी कम होती है, हड्डियां कम होने लगती हैं, तो इससे दांत हिलने भी लग सकते हैं।
1: तो इन सब रोगों से प्रभावित जो हमारे दांत होते हैं, इसके लिए हम क्या क्या उपाय करें और कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे कि ये स्थिति उत्पन्न ना हो?
0: देखिए, सबसे पहले तो डेंटिस्ट के पास आप हर 6 महीने में कंसल्टेशन या परामर्श लेने जाए
1: जी।
0: मुंह की साफ सफाई, ब्रश करना और फ्लॉसिंग करना चाहिए। साथ में एक अच्छा माउथवाश, क्लोरेक्सिडिन अथवा पोविडिन आयोडीन जिसे हम बेटाडिन कहते हैं, पानी में मिलाकर अच्छी तरह कुल्ला या गरारा करना चाहिए।
1: तो ये माउथवाश जो है, ये हम नियमित इसको यूज कर

0: आप बहुत स्टिकी खाना या फिर जो चिपकने वाला खाना है वो कम खाएं, हेल्दी खाना खाएं जिसमें बहुत सारा पोषण हो, और रेशेदार खाना खाएं जिससे कि आपके जबड़े का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता हो। और कभी-कभी आपको बहुत हार्ड फूड्स भी नहीं खाना चाहिए जिससे दांतों पे इफेक्ट हो, जैसे सुपारी हो गया, ये सब बहुत चबाकर नहीं खाना चाहिए या अवॉइड ही करना चाहिए।
1: जी, तो कैल्शियम की कमी से भी दांत में कुछ कमजोरी आती है।
0: जी आती है, इससे दांत आपके बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रहते हैं,
1: जी
0: साथ में जो जबड़े की हड्डी होती है वो भी कमज़ोर होते हैं, इससे दांत टूटने के चांस भी होते हैं या दांत हिलने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया वाली बीमारी होती है, इसमें आपका कैल्शियम और विटामिन बी की मात्रा आपके शरीर में बहुत कम पाई जाती है, इससे आपका हड्डी का जो डेंसिटी होता है वो घट जाता है, इससे आपके ओवरऑल दांत और उसके स्ट्रक्चर्स को इफेक्ट करता है।
1: खान पान में हम क्या खाएं कि हमारे दांत मजबूत रहें?
0: देखिए, खान पान में आप कैल्शियम रिच फूड खा सकते हैं,
1: अच्छा।
0: विटामिन्स और मिनरल युक्त नॉर्मल खाना खा सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेशेदार खाना जैसे कि ककड़ी हो गया, कैरेट्स हो गया, ये सब खा सकते हैं। बहुत स्टिकी या मीठा पदार्थ या पे लेना नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, बस यही सारे छोटे छोटे रूल्स फॉलो करके आप अपने दांतों को बचा सकते।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी लाभ पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: शरीर की व्याधि एवं स्थिति से उत्पन्न दंत समस्याएं और उनका समाधान, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर बीजू गोपाल और उनसे बातचीत कर रही थी मालती चौधरी। बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, एक स्वस्थ समाज की नींव एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे पर टिकी होती है, लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी और जानकारी के अभाव में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को वो पोषण और आराम नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। आइए आज बातें करते हैं कैसे ये योजना देश की गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, जिसका खास मकसद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, ताकि वो प्रसव से पहले और बाद में पूरी तरह आराम कर सके। साथ ही इसमें मजदूरी के नुकसान की भरपाई हो सके और माँ और बच्चे के पोषण स्तर में सुधार हो सके। इस योजना के तहत पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपए 2 किश्तों में दी जाती है। पहली किस्त गर्भावस्था के रजिस्ट्रेशन और कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच के बाद दी जाती है। दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण और टीकाकरण का पहला चक्र पूरा होने के बाद। वहीं महिला सशक्तिकरण और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार दूसरे बच्चे के रूप में बेटी के जन्म पर 1,06,000 रुपए की सहायता देती है। बता दें कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिलता है जो गर्भवती है या स्तनपान करा रही है, जो केंद्र, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित रोजगार में नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड और उससे जुड़ा

बैंक खाता है। इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि लाभार्थी सीधे इस योजना के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कार्यकर्ता की मदद से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। और श्रोताओं, इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना FM के 102.4 MHz पर आपके अपने कार्यक्रम कल कारखाने।

रांझना। इस फिल्म का गाना जावेद अली और कीर्ति सगाथिया के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सवारा था इस गीत को एआर रहमान ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। सुनेंगे कुछ ही पलों बाद हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्चन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत गीत में चीन और भारत युद्ध में जा रहे प्रेमी द्वारा प्रेमिका से एक बात कही जा रही है। वो युद्ध के लिए घर से निकल रहा है और अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मैं यदि जिंदा घर लौटूंगा तो समझना कि मैं विजयी होकर लौटा हूँ, और यदि मैं घर लौट ही ना पाया तो ये समझना कि मैं मर चुका हूँ। यही इस गीत में कहा गया है।

0: अभी आप झारखंड के लोकगीत में सुन रहे थे संताली लोकगीत। कलाकार थे करमचंद सोरेन। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत श्रोताओं आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहनों को नीलू का जोहार। श्रोताओं, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ऐसे में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खेती बाड़ी से जुड़े होने के कारण आपको काम पर खेतों में जाना पड़ता है। ऐसे समय में सुबह 11 बजे से पहले और शाम को 4 बजे के बाद ही अगर काम करें तो बेहतर रहेगा। ग्रामीण श्रोताओं, ये समय है धान का बिचड़ा तैयार करने का। धान की नर्सरी यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, इस महीने के अंत तक तैयारी कर लें। अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुसार अच्छी उपज देने वाली प्रमाणित किस्म का ही चयन करें। यदि आप हाइब्रिड ब्रीड बीज लगाना चाहते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम और यदि सामान्य धान के बीज लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से लें। बीज को फफूंद और रोगों से बचाने के लिए उन्हें उपचारित जरूर कर लें। बीजों को उपचारित करने के लिए 10 लीटर पानी में 2 किलो नमक मिलाएं। इसमें धान के बीज डालें, जो बीज तैरने लगे उन्हें हटा दें और जो नीचे बैठ जाए उन्हें साफ पानी से धो लें। इन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद पानी से निकालकर बीजों को जूट के बोरे में बांध दें और 15 से 20 दिन तक अंकुरण के लिए छोड़ दें। इसके बाद बीजों को फफूंदनाशी दवा से उपचारित जरूर करें, तभी बुआई करें। बुआई के लिए खेत में 1.5 मीटर चौड़ी और ज़रूरत के अनुसार लंबी क्यारियां बनाएं। 2 क्यारियों के बीच 1 फुट की दूरी रखें, यानी 1 हाथ की दूरी रखें, ताकि पानी डालने और निराई गुड़ाई करने में आसानी हो। क्यारियों में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद और थोड़ी मात्रा में जिंक मिलाएं। क्यारियों की मिट्टी को भुरभुरा कर लें और खेत को समतल बना लें। अंकुरित बीजों को बोने के लिए क्यारियों में समान रूप से बिखेर दें और ऊपर से गोबर की खाद की पतली परत से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। किसान भाइयों, बीज बोने के बाद शुरुआत में क्यारियों में केवल हल्की नमी रखें। पौधे 5 से 6 इंच के होने तक क्यारियों में शाम को पानी दें और सुबह इन्हें निकाल दें। आप देखेंगे कि 20 से 25 दिनों में धान की नर्सरी रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है।

किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बचाना, अत्यधिक रसायनों के प्रयोग को रोकना और उत्पादन की लागत को कम करना है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को मिट्टी परीक्षण और जैविक खेती की जानकारी देते हैं। इस अभियान का एक ही मंत्र है, सीमित और सही खाद का इस्तेमाल करना, जिससे उपज अच्छी हो, लागत में कमी आए, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल हो और प्राकृतिक खेती की ओर आप बढ़े। इस अभियान में किसानों को मृदा परीक्षण, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, हरी खाद और कम बारिश में वैकल्पिक खेती के तरीके सिखाए जाते हैं। नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करना भी इसका एक अहम हिस्सा है, ताकि आपको आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। तो किसान भाई बनो, इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।

ग्रामीण श्रोताओं, यदि आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2014-15 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, नस्ल सुधारना और पशुपालन को एक व्यवसायिक रूप में स्थापित करना है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पशुपालक भाई बहनों, इस योजना के तहत कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, सुकर पालन जैसे व्यवसायों को शुरू करने के लिए आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। परियोजना का लागत का 50% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान और उन्नत नस्ल के लिए जानवरों के आयात के माध्यम से भेड़ बकरी और सुकर की नस्लों में सुधार भी किया जाता है। इसका लक्ष्य दूध, मांस, अंडे और ऊन उत्पादन को बढ़ाना है। पशुपालक बंधुओं को अपने पशुओं के लिए अच्छी किस्म का चारा मिल सके, इसके लिए किसानों को चारा फसल लगाने के लिए बीज और चारा बैंक या ब्लॉक बनाने जैसे कामों के लिए भी आर्थिक मदद की जाती है। किसान भाई बहनों, यदि आप पशुपालन करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का लाभ अवश्य लें।

0: ग्रामीण श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं श्री तेज नारायण सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि इस मौसम में बुजुर्गों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तेज नारायण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
1: धन्यवाद।
0: तेज नारायण जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में बुजुर्गों को सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, गर्मी के समय में जो बुजुर्ग लोग हो गए हैं, उनको खासकर कब्ज का शिकायत रहता है ये गर्मी के चलते। जो हम अनुभव किए हैं कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको जो है कब्ज का शिकायत जो है कि गर्मी के दिन में बढ़ जाता है।
0: अच्छा।
1: है ना? तो इसी कब्ज ये हो जाता है, कारण ये है कि लोग पानी कम पीते हैं। तो इसलिए जो होता है कि पानी का सेवन जो है, जो बुजुर्ग हैं उनको जो है कि कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा
1: है ना? और एक तो सबसे अच्छा जो है कि उपाय है, सफगोल आता है ना, सफगोल, वो जो होता है सुबह जो है उसको जो है कि पानी में एक चम्मच घोल के आधा घंटा के बाद वो फूल जाता है।
0: अच्छा।
1: उसको पीने पर जो है कि कब्ज का समस्या लगभग जो है कि खत्म हो जाता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: है ना? और ये जो होता है कम से कम 3 से 4 लीटर पानी
0: रोजाना दिन में पीना है।
1: और ध्यान ये रखना है कि सब खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद ही जो है पानी का सेवन करें।
0: अच्छा अच्छा। मतलब पानी खाना खाने के आधा घंटा पहले हम पीना चाहिए और उसके आधा घंटा के बाद
1: खाने में
0: पानी नहीं पीना चाहिए?
1: नहीं। अच्छा, पानी रख लेना चाहिए, कहें कि गला वाला में फंसे तो थोड़े काज घूट ले ले। लेकिन यही है। अच्छा, इससे
0: मतलब खाना टकता हो तो उसके लिए काज घूट पानी ले सकते हैं।
1: हाँ, ले सकते हैं इसीलिए। अच्छा, ये हो गया। दूसरा बात ये है कि जैसे दोपहर में 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक उनको प्रयास करना चाहिए कि जो है कि वो बाहर ना निकले।
0: अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि तेज धूप में बाहर निकलने से उनको बचना चाहिए।
1: हाँ, ये चीज है। ये हो गया।
0: बाहर निकले तो क्या करें?
1: बाहर निकले तो जैसे टोपी पहन ले, छाता ले ले, ये सब। अगर बहुत जरूरी पड़े तब, खास करके कहें कि जवान लोग हैं, उनका जो जैसे कि किसी तरह का ये हुआ, जैसे हम महसूस करते हैं, उन लोग का बॉडी जो है कि किसी चीज को, जो शरीर जो है किसी, ये जो होता है कि ऑब्जर्व जल्दी कर लेता है। किसी
0: मतलब
1: तरह का ये हो जाता
0: है, कोई बदलाव आसानी से लोग ये कर लेते हैं।
1: लेकिन हम लोगों का के साथ दिक्कत ये है ना कि मान लीजिए कि कोई बुखार हो गया, लू लग गया, तो जल्दी शरीर उसको जो है कि ऑब्जर्व नहीं कर पाता है।
0: शरीर कमजोर हो चुका होता है,
1: कमजोर हो गया है इसके चलते जो होता है। तो इसलिए जो है कि या तो बहुत धूप है तो कोशिश करें कि नहीं जाएं, अगर जाना भी है तो आपको जो है कि टोपी, छाता और पानी साथ अपने साथ रखें।
0: ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बाहर निकलते समय छाता टोपी रख ले। अच्छा, कुछ कपड़ा भी वैसा है क्या कि ऐसा कपड़ा पहन के निकले जिससे धूप का प्रभाव आपके शरीर पर कम पड़े?
1: डार्क कपड़ा नहीं पहने, समझे ना, लाइट कलर का हो उसको पहनिए। और कपड़ा जो है कि ज्यादा चुस्त नहीं रहना चाहिए, ढीला डाला रहे, है ना, ये जरूरी है।
0: अच्छा, इस मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए?
1: हम तो जो अपना बात है तो नॉर्मल जैसे सुबह में जो होता है कि जो नाश्ता है, जैसे चना फूला हुआ है, ये सब जो है कि फुलाया हुआ चना, मूंग, ये सब ले, मट्ठा हुआ, दही का शरबत, इसका ज्यादा सेवन करे। फिर दोपहर का खाना चावल दाल सब्जी जो होता है नॉर्मल खाइए। शाम को जो है कि जैसे जो नॉर्मल नाश्ता करते हैं, अब नॉर्मल नाश्ता का मतलब नहीं कि हम जो है कि चाय पकौड़ी ही ज्यादा खाए, चाय एक जैसे हम तो है तो ये भूंजा ले लेते हैं जनरली, ये जो है कि चना मकई और ये चुगड़ा वगैरह का जो है कि मिक्स जो है कि भूजा रहता है वही रहता है, थोड़ा सा जो है कि खा के चाय पी लेते हैं। शाम की जनरली की रोटी सब्जी और दाल यही है।
0: और शाम को कितने बजे तक बुजुर्गों को खा लेना चाहिए?
1: शाम को देखिए कि 8 बजे के पहले खा ले तो बहुत अच्छा है। कम से कम 8 से 9 घंटा का खाने के बाद जो है कि गैप रहे ना, बीच बीच में पानी अगर भूख भूख लगता है तो लिक्विड लेते रहे।
0: अच्छा, जब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो कौन से पेय पदार्थ उन्हें पीना चाहिए?
1: पेय पदार्थ में हुआ, जैसे हमारे यहाँ है कि हम आम रखते हैं, आम का ये जो होता है कि आम है उसको जला के जो है आम पन्ना, जानती होंगी आप, उसको लेते हैं। नहीं, हम देखे हैं कि आपको नींबू और शरबत बना के पीने पर गैस हो जाता है।
0: अच्छा,
1: हमारे साथ ये समस्या, तो उसको जो है कि हम नहीं लेते हैं,
0: थोड़ा एसिडिटी बढ़ता है उससे, नींबू
1: एसिडिटी बढ़ जाता है अपने जो है कि देखे हैं। अच्छा, और एक बेल का शरबत है वो ले लें, काहे कि ग्लूकोज वगैरह लेने पर जो है कि डायबिटीज वगैरह का,
0: हाँ इस उम्र में तो डायबिटीज बढ़ जाता है।
1: आम का पन्ना बना लीजिए, बेल का शरबत, यही सब।
0: सत्तू भी खोल के पी सकते हैं?
1: हाँ, सत्तू भी पी, सत्तू तो बहुत ही बढ़िया है।
0: अच्छा, पानी पीने की बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि 3-4 लीटर तक पानी पीना चाहिए।
1: हाँ, 3 से 4 लीटर पानी जो है।
0: तो क्या कुछ ऐसा है कि इतने अंतराल पर पानी पीना जरूरी है?
1: डिहाइड्रेशन होता है ना, तो आदमी का प्यास मर जाता है।
0: अच्छा, प्यास लगेगा ही नहीं?
1: प्यास लगेगा ही नहीं, तो हम लोग जो होता है कि हर 1 घंटा पर आधा लीटर पानी पीते थे।
0: अच्छा अच्छा, हाँ मतलब अगर बहुत गर्मी हो तो प्यास महसूस नहीं होता है लेकिन शरीर में पानी की कमी हो जाती है।
1: कमी हो जाती है, अपने को समझना है। आधा लीटर शायद पी पाएंगे कि कहीं, हम लोग का आदत हो गया था, आधा लीटर एक बार में पी जाते थे, तो थोड़ा
0: पानी पीते रहे।
1: हाँ, पीते रहे,
0: नहीं रात के समय पानी कम पीना चाहिए।
1: ना, रात को जो हम जो करते हैं, जैसे खाना जो है 7 से 8 बजे के बीच खा लिए। अच्छा, उसके बाद सोने के पहले जो होता है वो आधा लीटर पानी पी लेते हैं। अच्छा, जैसे हम जो है कि 9 से 10 बजे सो जाते हैं और ऐसा आदत हो गया है कि हम कि 3:30-4 तक जो है कि उठ जाएंगे।
0: ओह, आप सोने ना, सोने और उठने का समय बहुत ही अच्छा है।
1: अच्छा, उस मंत्र जाप है, कुछ आसन है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब मन निकालने के लिए भी हमारे बुजुर्गों को ये सब करना चाहिए।
1: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में
0: अपने को अलग आते हैं बुजुर्ग,
1: अलग थलग पाते हैं, तो उसमें जो होता है कि अध्यात्म जो है आपका, मंत्र जाप है, समझे ना, वो जो है कि बहुत शांति देता है। ये अपना अनुभव, प्राणायाम कीजिए या कोई भी आपका देवी देवता, जिससे हर आदमी का आप देखे होंगे कि किसी न किसी देवी देवता से कुछ विशेष लगाव होता है, है ना, आप भी अनुभव किए होंगे, तो उनका जो है कि जाप करते रहिए। जब तनाव महसूस हो तो वो जो होता है कि बैठ के आराम से उनका मंत्र जाप करते रहिए तो मन शांत हो जाता है।
0: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अपने खाली समय का, जबकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर थकने लगता है लेकिन उनको उतना ही चंचल रहता है, तो उसको शांत रखना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, उसके लिए जो है कि मंत्र जाप से बढ़िया कुछ भी नहीं है।
0: तेज नारायण सिंह, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

ग्रामीण बंधुओं, आइए एक नज़र डालें मौसम पर। नई दिल्ली, भारत मौसम विभाग नई दिल्ली और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों का कल यानी 3 जून 2026 दिन बुधवार का मौसम कुछ इस प्रकार होगा। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 71% और न्यूनतम 38%। हवा की दिशा होगी उत्तर से पूर्व की ओर और रफ्तार होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कृषक बंधुओं, मौसम को ध्यान रखते हुए इसमें आप हरी खाद के लिए सनई ढेचा की बुआई कर सकते हैं। सनई की अगर आप बुआई करते हैं तो इसके लिए 60 से 70 किलोग्राम और ढेचा के लिए 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत होगी। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी भी होना जरूरी है। ग्वार, मक्का, बाजरा आदि चारा फसलों की बुआई भी आप इस समय कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। किसान भाई बहनों, अरहर कपास की बुआई के लिए आप खेत को तैयार करें और बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। ये थी मौसम संबंधी समसामयिक जानकारी। आइए अब सुनते हैं वीणा पाणी महतो की आवाज में कुरमाली लोकगीत।

शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचे। हमेशा खूब पानी पिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। यदि तेज बुखार, चक्कर आए, पसीना ना निकले तो समझे कि आपको लू लग गई है। ऐसे में एक बार डॉक्टर से अवश्य दिखा ले। किसान भाई बहनों, शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए सादे पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, आम पन्ना, सत्तू का शरबत जरूर पिए। यदि बहुत अधिक प्यास लग रही हो, मुंह सूख रहा हो, थकान हो और सर दर्द हो तो ORS का घोल बनाकर जरूर पिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी जैसे मौसमी फल खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। बंधु, गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है जिससे डायरिया, उल्टी या फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सादा, कम तेल मसाले वाला सुपाच्य भोजन करें। खाना को हमेशा ढक कर रखें। बाहर के कटे फल, ठेले और खुले में रखे हुए खाना ना खाएं। गर्म हवाएं और धूल से आँखों को भी नुकसान पहुँचती है जिससे आँखों में एलर्जी हो सकती है। इससे बचाव के लिए अच्छी क्वालिटी का धूप चश्मा पहने और घर लौटने पर ठंडे पानी से आँख और पैर हाथों को अच्छी तरह से धो लें। इस तरह आप इस मौसम में अपना गर्मी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, गर्मी के बाद अगर बारिश के चंद छींटे पड़े तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर बारिश बहुत तेज हो रही हो और गरज के साथ बिजली चमके तो कुछ खास बातों का ख्याल रखें। बारिश के समय पेड़ के नीचे कभी ना खड़े हो, ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ऊंचे पेड़ आकाशीय बिजली को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं जिससे बिजली गिरने पर आपकी जान भी जा सकती है। इसके अलावा तेज हवा से पेड़ की भारी डालियाँ भी टूट कर आप पर गिर सकती हैं। इसलिए श्रोताओं, अगर आप घर के बाहर हों, तेज बारिश हो रही हो तो किसी मजबूत और सुरक्षित इमारत या पक्की छत के नीचे ही रुके। यदि आप किसी गाड़ी में हो तो गाड़ी के अंदर ही बैठे, खुले खेत या खुली सड़क पर ना खड़े रहें। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप आनंद लेंगे हमारे कार्यक्रम का। तो हमारा आपका साथ यही इसी तरह बना रहे और हमारी आपस की बातचीत चलती रहे। इस के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। नीलू को दीजिए इजाज़त। जोहार।

0: किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM, कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में। उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से 6500 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने मानकों के अनुपालन पर 2500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में 1400 करोड़ के ओवरसाइज्ड घटकों की समीक्षा करने और JJM के प्रबंध निदेशक का पद संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया है कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत तय है।
2: केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद हमारे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीदवार होगा जो 100% का भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता होगा और पूरे तरीके से दमखम से चुनाव लड़ेगा। भाई आंकड़े हमारे पक्ष में बिहार में भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके आधार पर दिया। यहाँ तो व्हिप भी जारी नहीं होता है, तो हमारे जो उम्मीदवार है वो सारे वोटर्स के पास जाएंगे, अपना वोट मांगेंगे, अपना विजन बताएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सत्ताधारी गठबंधन ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नैतिकता को ताक पर रखकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है।
3: यहाँ उनके कुत्सित प्रयास सफल नहीं होंगे। नैतिकता को ताक पर रख के उन लोगों ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। कहां से लाएंगे विधायकों की संख्या? खरीद फरोख्त, पैसे के बल पर राजनीति करेंगे, झारखंड को दागदार करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। ये झारखंड है, फुल प्रूफ रणनीति है हेमंत सोरेन जी की, इंडिया गठबंधन का दोनों उम्मीदवार जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और जिस तरह से इन 12 वर्षों में देश की सेवा उन्होंने की है, लगातार

0: लगातार लोगों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए चार आयाम युवा महिला गरीब और किसान उनके लिए निरंतर योजना बनाना उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे उसके लिए उन्होंने काम किया।
1: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द महालेखाकार को सौंपने की भी बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों समेत सभी नागरिकों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने और एम्बुलेंस की निगरानी के लिए AI कंट्रोल रूम बनाने को कहा है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में सुधार और ANM GNM की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने CBSE में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के विवाद के बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को पद से हटा दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वहीं साइबर हमले के बावजूद बोर्ड का री इवैल्यूएशन पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और पहले ही दिन 16,000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से CRPF हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार CRPF हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी।
2: तो मैंने होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि आप CRPF और मेरी बात भी CRPF आईजी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जितना देरी और रह सके जितना अधिक समय तक तो वो रहे। लेकिन वो आप जानते हैं कि भारत सरकार का मामला है, गृह विभाग भारत सरकार अगर चाहे तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर वो विड्रॉ जिस समय करेगा तो फुल स्ट्रेंथ में बुरा पहाड़ ऐसे क्षेत्र में झारखंड की पुलिस वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी।
1: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से ना छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले BLO को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही।
3: निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी के साथ में बैठक हुई, उसमें कुछ सिलेक्टेड BLO का भी हम लोग आमंत्रण किया था, उनका मैपिंग काम है। आज वो पैरेंटल मैपिंग के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें अभी लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है, उसमें बचा हुआ 24% में कुछ USDD वोटर का भी उसमें शामिल है।
1: ADG मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों की पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। ADG ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
4: विधि व्यवस्था एवं उसके अलावा स्पेशल क्राइम्स पे हम लोग एक रिव्यू किए हैं, जिसमें गुमला, लोहरदगा, खूंटी और सिमडेग चारों जगह के ऑफिसर्स रिवेड रिव्यू हुआ है। उसमें जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए थे तो उसकी डिटेल प्रोग्रेस हम लोग जांचे हैं और जिन केसेस में एक्शन पेंडिंग थे तो उनमें एक्शन करने के लिए डायरेक्शन दिए। उसके अलावा जैसे है क्राइम अगेंस्ट व्यूमेन एंड चिल्ड्रन, उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया गया है सभी SPs के।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार वीरता, खेल, समाज सेवा और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में कल

0: संताल परगना को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। न्यूजीलैंड में होने वाले FIH महिला नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की तीन खिलाड़ी सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग को जगह मिली है। सिमडेगा की सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की तीन खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में पिछले दिनों बैच 7 के 1121 अग्निवीर रंगरूटों ने शपथ ग्रहण समारोह के परेड में हिस्सा लिया। गर्व और उत्साह के माहौल के बीच इन अग्निवीरों के 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग परेड में देखने को मिली। साथ ही परेड में सैन्य अनुशासन, टीम वर्क, युद्ध तैयारी और रेजिमेंट की शानदार परंपराओं की झलक भी दिखी। युवा अग्निवीरों ने अपने आत्मविश्वास, सटीक कदम ताल और समर्पण से राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई। मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है, चाहे आपको यह आदेश बॉर्डर हाई सिक्योरिटी या सिविल ऑफ एरिया में क्यों न दिया गया हो।
2: ये बटालियन तैनात है हाई एल्टीट्यूड से लेके सियाचिन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पूरा देश में यूनिट्स डिप्लॉयड है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रामगढ़ चैम्बर भवन में पिछले दिनों चैम्बर सेवा ट्रस्ट द्वारा समागति कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा ने लोगों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक ममता देवी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य लोगों ने तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों पर चर्चा की तथा पान मसाला और गुटखा के प्रचार पर प्रतिबंध की मांग दोहराई। इस मौके पर रामगढ़ विधायक ममता देवी ने बताया कि
3: कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं और लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं कि कैंसर छुआछूत की बीमारी होती है, तो ये भावनाएं भी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और इसका आज भी इलाज है। या वो हमारे

0: भी कैंसर की बीमारी है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सतीश शर्मा जी को संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों को भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर उनका बेहतर इलाज के लिए हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे।
1: मौके पर अपनी जांच कराने आए रामगढ़ शहर के एक समाजसेवी धनंजय कुमार पुटुच ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार युवाओं से धूम्रपान निषेध के लिए अपील करते हैं और युवा वर्ग को इससे दूरी बनाकर रखने की बात करते हैं। मौके पर रांची के डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने इस दिन का चयन किया कि रामगढ़ के गणमान्य लोगों को यह बताया जाए कि तंबाकू लंबे अंतराल के बाद कैसे नुकसान पहुंचाता है। रामगढ़ पुलिस ने पिछले दिनों संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों और एक किशोर को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि
2: त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक उरी विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, टीवीएस अपाची बाइक, एक स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में पतरातू थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए हिरासत में भेजा जा रहा है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रामगढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से जागरूक कर स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
3: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम।

बंगला कार्यक्रम श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन है मंगलवार और शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्राम विकास पर आधारित हमारा कार्यक्रम आलोक।

0: Alo.
1: ग्रामीण श्रोता मित्रों को हमारा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम आलोक के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं शशांक शेखर।
2: पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड क्षेत्र के बड़ा बांकी पंचायत दिलशील पहाड़ी गांव में 8 दिवसीय एक साइंस समर कैंप का आयोजन पिछले दिनों किया गया। आरंभ युवा मंच जमशेदपुर की पहल पर विदु चंदन ट्रस्ट के सौजन्य से आयोजित इस समर कैंप में आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न तरह के विज्ञान पर आधारित और अन्य शिक्षा मूलक गतिविधियों में उन्होंने बड़े ही दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया।

0: इस दौरान विभिन्न रोचक खेल गतिविधियां भी बच्चों से कराई गई। जमशेदपुर के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म अभिनेता प्रेम शर्मा ने बच्चों को कई तरह के गेम्स कराए और बच्चों ने बड़े जोश के साथ उनमें हिस्सा लिया।
1: एक दो फिर एक दो, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट।
0: इसके साथ साथ कई जादू दिखाए गए। जादू के दौरान बच्चों ने ये महसूस किया कि ये कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है।
2: ये पूरी तरह दिमाग का एक खेल था। जब आपने बच्चों को अपने पसंदीदा मिठाई का नाम लेने बोला या फिर पेपर में लिखने बोला तो उनके दिमाग, उन्होंने जब आंदोलन किया तो उनके दिमाग में बस वही मिठाई का नाम घूम रहा था। तो जब उन बच्चों ने अपना जीभ निकाला और आपने जिस पेपर में उन बच्चों ने अपना पसंदीदा मिठाई का नाम लिखा था वो पेपर आपने उनके जीभ में रखा तो उनके जीभ में वो थोड़ा सा टेस्ट आया।
3: आप सभी के जोहार, मेरा नाम सोमनाथ हंसदा है। मैं वर्ग 9 आवासीय उच्च विद्यालय घाटशिला में अध्ययन करता हूँ। हम लोग जो कल कुछ क्रियाकलाप किए उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हम लोग को कल होमवर्क करने को दिए, उसी को सर ने पूरी अच्छी तरह से समझाया और जो बच्चे होमवर्क अच्छी तरह से कर लिया था उन बच्चों को एक एक कागज का टुकड़ा दिया। उसमें आप लोग को कौन सी मिठाई सबसे पसंद है उस मिठाई का नाम लिखने को कहा था। बाद में एक एक को बुलाकर उसकी मनपसंद मिठाई का नाम जोर जोर से बोलने को कहा। उस कागज़ पर कुछ खाने की चीज़ जो मिठाई की तरह लगता हो, उस खाने की चीज़ दवाई की गोली जैसी थी। उस खाने की चीज़ कागज में रगड़ाया और उस कागज को मुँह में डाल दी तो सचमुच में मिठाई की खाने की तरह लगी और अंत में हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल बनाए और एक प्यारा सा कहानी कहा।
0: इस समर कैंप से जुड़े कई लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ बात करते हैं जो ट्रेनर लोग भी यहाँ पर जो लड़कियों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
4: दीपाली सोरेन मेरा नाम।
0: इसी गांव की रहने वाली हो?
4: हाँ, बगल वाला गांव के हैं।
0: तो ये जो समर कैंप है
4: जी
0: चल रहा है, इस तरह का समर कैंप क्या यहाँ पहली बार हुआ?
4: जी पहली बार हुआ है।
0: क्या कुछ हुआ यहाँ एक्टिविटीज?
4: यहाँ की बच्चे लोगों को मतलब कितना एक्टिविटी करवा रहे हैं कि उतना सब करवा रहे हैं ना, कितना दिमाग है उन लोग के पास, कितना कर पाएंगे वही सब इन लोग को यहाँ ट्राई कर रहे हैं। शुरू के दिनों में थोड़ा हिचकिचा रहे थे बच्चे लोग ना, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए ना समर कैंप। आज उसके बाद दूसरा दिन 26 के बाद 27 गए हुआ।

0: छोटे बच्चे ना, वो लोग समझ में नहीं आता है उन
1: पर
0: लोगों को ना,
1: उनको
0: तो हाँ
1: डिसिप्लिन ये
0: डिसिप्लिन
1: मैंने
0: सिखाते हैं ना,
1: बताया
0: ऐसे करो ऐसे करो, वही सब।
1: ना। आप क्या करती हो?
0: हम अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे, सेमेस्टर 4 में हैं।
1: अच्छा, तो आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, क्या करना है?
0: मेरा लक्ष्य, मेरे को तो मतलब अभी बस ऐसे अभी पढ़ाई कर रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को पढ़ा रहे, और मेरा ये लक्ष्य तो हमको पुलिस बनना है, तो उसके लिए
1: ओके,
0: तैयारी कर रहे
1: बहुत। क्या
0: हैं।
1: नाम है आपका?
2: सीमा लोहरा,
1: इसी गांव की रहने वाली?
2: हाँ हम छोटा मक्की गांव के रहने वाले हैं,
1: जी।
2: और यहाँ समर कैंप में हम शामिल हुए हैं, और समर कैंप में बहुत कुछ सीखने मिला है। यहाँ पर बताया जाता है कि भूत डायन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक वहम हुआ है। और साइंस के बारे में बताया गया, जैसे जादू में दिखाया जाता है कि ऐसे होता है, पर ये सब साइंस है।
1: अगर हम डीपली स्टडी करते हैं तो सच को पाते हैं ढूंढ के, है
2: हाँ
1: ना? वो चीज इस समर कैंप के दौरान बच्चों के साथ भी ये बातें शेयर की जा रही है।
2: हाँ
1: आप क्या करती हो, पढ़ाई लिखाई?
2: हम सेमेस्टर 3 में है अभी, ग्रेजुएशन कर रहे हैं सांची कॉलेज से।
1: आपका यहाँ पर इस कैंप में रोल क्या रहा?
2: ये कि बच्चे लोगों को गाइड करना,
1: गाइड करना।
2: और बच्चे लोगों के साथ अपने खुद को भी सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ नहीं पता था, सीखने को मौका मिला, अच्छा लगा कि हम नहीं जानते थे इसके बारे में। जरूर होना चाहिए, और बच्चे लोगों के अंदर टैलेंट छुपा है,
1: वो निखर के
2: वो निखर के आ जाता है अपने आप।
1: आप बच्चों को पढ़ाती हैं, जैसा कि पता चला शिक्षा का दान मुफ्त में देना, वो
2: हाँ,
1: तो ये आप करती हो?
2: हाँ
1: क्या,
2: जी।
1: क्या समय रहता है आपका?
2: 3 बजे से 5 बजे तक मेरा टाइम रहता है, 2 घंटा बच्चे लोगों को पढ़ाना, क्योंकि ऐसे बच्चे लोग इधर उधर स्कूल के टाइम हो जाता है, उसके बाद छुट्टी होने के बाद ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं बेकार का। उससे अच्छा मैं अपना शिक्षा दान करूं, ताकि बच्चे लोग आगे बढ़ पाए, शिक्षा मेरे से ले पाए। ऐसा बहुत बच्चा है जिसके माँ बाप है जो नहीं पढ़ा पाता है, उन लोग बेकार का घूमते रहता है इधर उधर। उससे अच्छा हम सोचते हैं हम खुद से अपना टाइम निकाल के उन लोगों को पढ़ाए। ऐसा बहुत है जो बहुत ट्यूशन है उसमें फीस लिया जाता है बहुत ज्यादा, और ऐसे गरीब बच्चा है जो दे नहीं पाता है, पढ़ नहीं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता है, तो सोचते हम कि मेरा जो टाइम है हम इन लोगों को निकाल के उन लोगों को शिक्षा दे।
1: क्या नाम है आपका?
2: सावित्री सोरेन।
1: यहाँ शुरू के दिनों से आप हो?
2: हाँ, ठीक।
1: समर कैंप में?
2: हाँ।
1: तो यहाँ क्या कुछ नया मिल रहा है देखने को, पढ़ाई लिखाई सिलेबस से बाहर की बातें है ना?
2: यहाँ पर ये समर कैंप हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव के बच्चे सब ये सब देख के कुछ पढ़ाई पढ़ाई तो ऐसे बुक किताब में होता रहता है, बट ये बाहर के कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, वो लोग वो सब पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा मतलब ये करने सकेंगे, किताब से बाहर
1: बाहर की चीजें, और ये खेल खेल में,
2: खेल खेल में हाँ।
1: ये ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं बच्चे,
2: हाँ।
1: ज्यादा दिनों तक तो याद भी रख पाएंगे, और इनका जो व्यावहारिक जीवन आने वाले समय में उन चीजों को अप्लाई भी करेंगे लाइफ में ना,
2: हाँ।
1: ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है,
2: हाँ, ये
1: वो चीज देखने को मिला। इस तरह का कैंप का इस तरह से लगातार आयोजन होना चाहिए ना हर साल?
2: ये होना चाहिए हर साल, इससे बच्चा कुछ और न्यू चीज सीखने को मिलेगा उन लोगों को।
1: आप क्या करती हो?
2: हम अभी वो ट्यूशन पढ़ाते हैं बस।
1: पढ़ाई खत्म हो गई है?
2: हाँ, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, उसके बाद नहीं किए, छोड़ दिए।
1: अच्छा, तो परिवार में मेरे कौन कौन है आपके?
2: मम्मी पापा है, एक भाई है, 3 बहन है।
1: अच्छा, आपका मतलब आर्थिक उपार्जन कैसे होता है?
2: वो खेती बाड़ी करते हैं, पापा भी खेती बाड़ी करते हैं बस।
1: तो आप तो पढ़ाई के बाद भी बच्चों को पढ़ा रही हो, मतलब ट्यूशन पढ़ा रही हो कि यूं ही ऐसे, मतलब किस तरीके से बोले उसको?
2: वो ट्यूशन पढ़ा रहे, जो ये अभी चल रहा है ये विधु चंदन ट्रस्ट के तरफ से, उधर से
1: आप करती हो। आप इस समर कैंप में शुरू के दिन से हो?
3: जी।
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अर्जुन सोरेन है
1: जी।
3: और हम बच्चे को शिक्षा देने का कार्य करते हैं।
1: आपने पढ़ाई की?
3: हाँ, मैंने MA तक पढ़ाई की है।
1: फिलहाल क्या कर रहे हो, मतलब अपने करियर को लेकर कुछ कर रहे हो?
3: हाँ, अभी
1: तैयारी
3: तैयारी कर रहे हैं।
1: ओके, फिलहाल इस समर कैंप में जो कुछ हो रहा है 26 मई से लेकर 2 जून तक चल रहा
3: जी,
1: तो क्या कुछ खास चीजें हो रही है, नई चीजें क्या कुछ हो रही है?
3: शुरू में हम लोग कुछ खेल खेल में कुछ गतिविधियां सीखे, जैसे कि एक दूसरे से बातें करना, उनके बातों को ध्यान से सुनना, वो क्या कहना चाहता है उसको ध्यान से अपने अपने दिमाग में बैठना, फिर उसको सही तरीके से उसको सुझाव देना। उसके बाद गतिविधियां होते होते हम लोग का ऐसे भी जो अंधविश्वास, जैसे कि गांव देहात में बहुत सारे ऐसे चीज होता है कि अंधविश्वास पर मानते हैं बहुत ज्यादा गांव में लोग, जैसे कि मान लो कोई बिल्ली रास्ते को पार कर जाए तो वहाँ अशुभ माना जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे बातें ऐसे कि चप्पल उल्टा रहने से कि उसको भी अशुभ लोग कहा जाता है, तो और वैसे बहुत सारे
1: बहुत सारी सुनाई बातों को लोग विश्वास करते हैं।

0: चाहते हैं कि जो वर्षों से होता आ रहा
1: वर्षों से होता आ रहा है
0: उसको फिर लोग सवाल नहीं करते हैं।
1: सवाल नहीं करते
0: क्यों करते हो ऐसा सवाल नहीं करते। हाँ वो लोग करते हैं तो हम भी करते हैं। हाँ, ये चल रहा है ना।
1: हाँ,
0: तो जब... उसको मतलब सच तक टटोल के निकाल के जा कि भाई ये सच नहीं है ये सच है
1: जी।
0: और मतलब जिज्ञासा लोगों के अंदर में डाली जा रही है और वैज्ञानिक सोच
1: और जिज्ञासा
0: अच्छा लग रहा है ना
1: जी। बहुत अच्छा लग रहा है।
0: इस तरह का जो हो रहा है समर कैंप साइंस को लेकर खास करके
1: जी
0: अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में
1: जी। बहुत अच्छा बहुत भविष्य में बहुत अच्छा होगा।
0: यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक थिएटर आर्टिस्ट है फिल्म अभिनेता है यहाँ के जमशेदपुर के रहने वाले प्रेम शर्मा। इनसे आप बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के अंदर में आपने देखा कि क्या दिलचस्पी है क्या किस तरीके से आपके साथ वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका कैसा रहा।
1: क्योंकि 26 तारीख से ये वर्कशॉप कार्यशाला शुरू हुआ है साइंस समर कैंप। क्योंकि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मैंने कोशिश किया कि परफॉर्मेंस के थ्रू बच्चों के अंदर साइंस एक्सपेरिमेंट को दिखाने की कोशिश की मैंने, ताकि बच्चों के चेतना का विस्तार हो, बच्चे क्रिटिकली किसी भी चीज़ को सोच समझ पाए। हमारे अंदर बहुत सारी धारणाएँ होती है जो पहले से बसी बसाई होती है, जिस पर हम आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो क्योंकि अगर बच्चों को डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को साइंस एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाए या किसी चीज़ को दिखाया जाए तो बच्चे उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ उसको परफॉर्मेंस के थ्रू माध्यम से दिखाया जाए जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो बच्चे बहुत आसानी से ग्रैप करते हैं और बच्चे आसानी से समझते हैं। तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे ये लगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी उत्साहित है इस कार्यशाला को लेकर। और इसके साथ साथ ये भी है कि बच्चे चीज़ों को जितनी आसानी से सीख रहे हैं उसको उसी तरह से अपने ज़िंदगी में भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक का अनुभव यही रहा है। मैंने कुछ गेम्स खिलाए बच्चों को जिसमें वो अटेंशन से रिलेटेड हो, कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो। वो ऐसे गेम्स थे जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे कि वो जो भी कर रहे हैं या जो भी देखते हैं उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करे, वो उसके पीछे क्यों जोड़े कि ये क्यों हो रहा है।
0: मित्रों विदु चंदन ट्रस्ट की अध्यक्ष जो है शिवानी माडी जी, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले जोहार।
2: जोहार।
0: इसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव भी साझा करें।
2: पिछले कुछ दिनों से साइंस समर कैंप का आयोजन किया हुआ है हम लोगों ने और इसका बच्चे पे जो असर है वो बहुत पॉजिटिव तरह से वो काम कर रही है। क्योंकि बच्चे जो है पढ़ने के साथ साथ जो नेचर से जुड़ी हुई जो ट्रूथ है वो समझने लग गए हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये हर जगह होना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर में भी ये काम आएगा।
0: मित्रों पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत गोलबुरी शहर जुगसलाई प्रखंड क्षेत्र के बड़ा बांकी पंचायत अधीन सील पहाड़ी में पिछले 26 मई से लेकर 2 जून तक साइंस समर कैंप का सफल आयोजन किया गया।
3: इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार थे अंकुर शाश्वत और विकास कुमार। सहयोगी की भूमिका में थे प्रदीप रजक, विवेक, अर्जुन सोरेन, सीमा लोरा, सावित्री सोरेन और दीपाली सोरेन।
0: उसी पर आधारित ये थी हमारी विशेष रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता राकेश रमण, ध्वनिंकन एवं वाचन स्वर शशांक शेखर का। जोहार।
4: आलोक।

0: ग्राम विकास पर आधारित कार्यक्रम आलोक अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनेंगे आप बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
6: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हिमालय की गोद में। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शब्द रचना इंदिवर के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।

0: फरिश्ता या कातिल, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थी, बोल लिखे थे अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने बनाई थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपने सुना फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने बनाई थी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मुझे जीने दो। इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी। गीत के बोल साहिद लुधियानवी ने लिखे थे और धुन बनाई थी जयदेव ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना मस्ताना फिल्म का ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना फिल्म बरसात की एक रात का ये गाना। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत आर डी बर्मन ने बनाई थी।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपने सुना फिल्म मल्हार का ये गीत। बोल लिखे थे कैफ इरफान ने और संगीत रोशन ने बनाई थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं महाराजा फिल्म का ये गीत।

महाराजा, इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। गीत के बोल कैफी आजमी ने लिखे थे और संगीत था मदन मोहन का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा

0: अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: We categorically reject.
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
2: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1,00,000 रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6,00,000 गांव

0: पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है।
1: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
0: ये मददगार कितनी ज्यादा थी ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1,13,00,000 लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
1: जी।
0: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
1: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
0: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं। एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
1: जी,
0: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतने ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया और फिर 50,000 रुपये का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए में सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
1: जी।
0: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, दो स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
1: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
0: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
1: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
0: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है, लोग लोन चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
1: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
0: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहाँ पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि

0: पे प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
1: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
0: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
1: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
0: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको होता है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। इस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी लेकिन जहाँ जो क्रिटिकल है वहाँ वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं न कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
1: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
0: एक तो हम देखना चाहते थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाहते थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो चार बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उनके घर का रहन ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ और खाने पीने का, एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
1: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
0: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
1: जी,
0: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
1: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
0: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको एक बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
1: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
0: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75.5 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
1: बिल्कुल,
0: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकंड लोन के लिए एलिजिबल हैं। उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकंड लोन लिया है और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपेयर कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60% 70% लोग जो है तो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
1: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
2: सर, हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
1: जी,
2: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे। दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो

0: जो आई ये ऐसा अच्छा हुआ कि पहली बार तो बैंक हम लोग को सम्मान मिलने लगा, फिर उसके बाद जब हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बार तो उसमें मंथली देना पड़ने लगा, फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला और उसके साथ साथ पीएम सुनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल, तो विष्णु जी बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी बात बता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कम्बाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम मंथन अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आज है मंगलवार की रात और बज रहे हैं रात के 10। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश।
1: हेलो आपकी फरमाइश, आपके सुर और हमारी आवाज, आप और हम मिलकर सजाएंगे गीतों की खूबसूरत महफिल। संगीत का सुरीला सफर और सुरों का खजाना लिए हम हाजिर हैं आपके चहेते कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप। दिल की धड़कन, यादों का साया और आपकी हम सफर, मैं निमिषा। कुछ अनकही बातें और आपकी खूबसूरत फरमाइश के साथ लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो आपकी फरमाइश।
2: गुड नाइट बेटी।
1: जी हाँ, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं?
2: ओ गुड इवनिंग, सॉरी सॉरी, एक रात का फुकरा मिला।
1: जी हाँ, ये रात की बेला है और इस वक्त आप बहुत ही प्यारा प्यारा गाना सुन सकते हैं।
2: ये तो शत्रुघ्न सिन्हा का पिक्चर आया था बदला
1: जी,
2: उसका मिलेगा के स्कोर बच गया, स्कोर देखो आया माखन चोर, किशोर कुमार का गाना गाना है और 70-71 का पिक्चर है, मिलेगा को बजा दीजिए फिर।
1: तो ठीक है रुंगटा जी, हम आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं और सुनवाते हैं आपको फिल्म बदला का ये गीत। ये गाना हम तो आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी सेहत कैसी है?
2: बहुत बढ़िया अभी।
1: चलिए आप ताउम्र यूं ही फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और आकाशवाणी को सुनते रहिए।
2: थैंक यू
1: जी। हाँ, आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं फिल्म बदला का ये गीत।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: यस मैम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून दोस्त, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम मैं ओम बोल रहा हूँ, ओम मुर्मू।
0: ओम मुर्मू जी, कैसे हैं दोस्त?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: आप हमारे नन्हे श्रोता हैं और आपसे ढेर सारी मीठी मीठी हमारी बातें भी होती हैं, है ना?
1: यस मैम।
0: ओम मुर्मू जी, अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं ना?
1: यस मैम, मैं पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहा हूँ।
0: और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना होता है ना?
1: जी मैम बिल्कुल। मैम आप इस धुंधुनाती बढ़ती गर्मी में आप कैसे हैं?
0: इस तपती गर्मी में, बढ़ती हुई गर्मी में हमें तो उतना ही कूल रहना पड़ता है जितना कूल हमारे छोटे छोटे नन्हे फरिश्ते रहते हैं,
1: जी मैम बिल्कुल।
0: क्योंकि गर्मी से भागकर आप जाएंगे कहाँ। मौसम है, बदलता रहेगा, और आज गर्मी है, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। कल फिर बारिश की बूंदें जब टपकेगी इस धरा पर, तो मौसम धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
1: जी मैम बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी गर्मी की छुट्टियां कितने महीने की होती हैं?
1: मैम मेरे गर्मी की छुट्टियां तो 1 महीने की होती है।
0: पूरे 1 महीने की? तो इस 1 महीने में आपने क्या क्या शेड्यूल कर रखा है अपने लिए?
1: तो फिर मैम देखिए, इस 1 महीने की गर्मी में अपने लिए शेड्यूल तो जैसे ज्यादा तो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्टिंग होता है, तो मैं पढ़ाई करता हूँ समय समय पर, और कभी संगीत भी किया करता हूँ, क्योंकि सैटरडे का जो मेरे मैम आती है अनिशा मैम, वो अभी गाने का कोर्स सिखा रही है, गाने का कोर्स।
0: अच्छा,
1: जी मैम।
0: तो आप गाना भी गाते हैं?
1: जी मैम बिल्कुल।
0: तो आज जिस गाने की आप फरमाइश करेंगे वो गाना आपको गाकर सुनाना होगा।
1: जी मैम, ये गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ, मेरा तो जो भी कदम है, ये फिल्म दोस्ती से है,
0: अच्छा,
1: फिर गीत को सजाया है मजरूह सुल्तानपुरी ने, और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
0: वाह, तो गुनगुनाइए इस गाने को।

0: वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा गाते हैं आप।
1: यस मैम, मैम ये जो फिल्म है ना दोस्ती,
0: जी हाँ,
1: ये फिल्म जो है मैंने और मेरे दादाजी ने साथ में बैठ कर देखा था।
0: अरे वाह, तब तो दादाजी के साथ की आपकी बहुत प्यारी याद है ये।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए दोस्त, आपकी फरमाइश आप तक लेकर आते हैं और आपके पूरे परिवार के साथ आपको सुनवाते हैं फिल्म दोस्ती का ये गाना।

0: वो आपकी
1: हेलो,
0: फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम, मैं सुनारी से अंजू बोल रही हूँ।
0: अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में।
1: हमें तो सबसे पहले आपको बधाई देनी है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सालों बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है और हम लोग काफी इंतजार में थे इस कार्यक्रम की।
0: और हमें
1: पहले
0: भी
1: तो साई साई जी की आवाज में ये कार्यक्रम हम लोग सुनते थे और आज आपकी आवाज में सुनेंगे, हमें बहुत उत्सुकता हो रही है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज भी आप उतनी ही शिद्दत से इस कार्यक्रम को सुनना चाहती हैं। अंजू जी, एक बात आपसे जाननी है कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, घर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ। पहले मैंने एक टीचर थी पहले, अब मैं
0: अच्छा,
1: टीचिंग जॉब नहीं कर रही हूँ लेकिन बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ और फिर एक हाउसवाइफ हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। यानी आप घर को मेंटेन करने के अलावा बच्चों को भी देख रही हैं, उनकी भी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: अंजू जी, आपको रेडियो सुनने का वक्त मिल जाया करता है?
1: बिल्कुल। रेडियो एक्चुअली निमिषा मैम, रेडियो हमारे किचन में चलता रहता है और सुबह जैसे ही मैं किचन में आती हूँ सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता है 2.4 MHz और उसके बाद मेरा काम शुरू होता है।
0: यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप शायद बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती होंगी, क्योंकि उन व्यंजनों के साथ गीत संगीत के अलावा कई कार्यक्रम जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, जानकारी से भरे आपके चैनल के कार्यक्रम मैं हमेशा सुनती हूँ। गाने एक से एक रहते हैं, अनाउंसर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह प्रस्तुति देते हैं और सुरीले अंदाज में मैं खाना बनाती हूँ।
0: आपकी जिंदगी ही कुल मिलाकर सुरमई चल रही है।
1: बिल्कुल, सुरीली जिंदगी है
0: तो
1: निमिषा मैम और उसका दारोमदार पूरा जाता है आकाशवाणी जमशेदपुर।
0: और सिर्फ आकाशवाणी जमशेदपुर यूं ही खड़ा नहीं हुआ है, जब आप जैसे श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो ही आकाशवाणी जमशेदपुर फलता फूलता है, फलीभूत होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अंजू जी,
1: बिल्कुल।
0: इतना खूबसूरत हमारा बातचीत का ये सिलसिला चल रहा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज आपने कौन सा ऐसा ही कोई मीठा गीत चुन रखा है अपने लिए इस प्रोग्राम में सुनने के लिए।
1: बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से इस कार्यक्रम का इंतजार था हमें, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना आज पहली बार मुझे याद आ रहा है कार्यक्रम के लिए। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है और वो इंतजार खत्म हुआ।
0: ये एतबार फिल्म का गाना है, आप तक हम लेकर आते हैं आशा भोसले और भूपिंदर सिंह की आवाजों में। हसन कमाल
1: जी
0: की रचना
1: बहुत
0: है,
1: शुक्रिया,
0: संगीत बप्पी लहरी का है।
1: जी बहुत शुक्रिया निशा मैम।
0: आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ी और इतनी सारी बातें हमसे की, साथ ही इस कार्यक्रम को फिर से आपने याद किया है।
1: थैंक यू,
0: तो
1: धन्यवाद।
0: चलिए आपके यादों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से हेलो आपकी फरमाइश में जुड़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना एतबार फिल्म से।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, यस
0: हेलो वीर सिंह जी,
1: मैम, आप कैसे हैं? मैम,
0: हम तो अच्छे हैं, आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और कल कल परसों शायद बारिश हुई थी तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तपिश में शाम के वक्त थोड़ी बहुत बारिश हो जा रही है, और ये मानव जीवन ही नहीं बल्कि समूचे वनस्पति जगत को राहत दे रहा है।
1: यस मैम,
0: और बताइए।
1: यस मैम, और तो सब बहुत अच्छा है।
0: तो पढ़ाई लिखाई चल रही है ना ठीक ठाक से?
1: यस मैम, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी तरीके से चल
0: और
1: रही है।
0: पढ़ाई लिखाई के साथ अदर एक्टिविटी आप किस तरह से कर रहे हैं?
1: मैम, मैं अदर एक्टिविटी जैसे मैं शाम के समय मैं साइकिलिंग करता हूँ, यानी मैं साइकिल चलाता हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, इससे तो मन और तन दोनों का एक्सरसाइज हो जाता है ना?
1: यस मैम,
0: और गीत संगीत सुनते हैं या नहीं?
1: यस मैम, गीत संगीत तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं 3 बजे हर रोज सखी सहेली सुनता हूँ, और अपना हेलो मन भवन और हेलो आपकी फरमान तो चलता है ही।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी को भी बराबर करते रहना चाहिए। जी हाँ, आपकी कौन सी फरमाइश है?
1: मैम, मुझे आज सुनना है आनी तेरी मोरनी को मोल गए, बाकी दो बच्चा का काले चोले गए।
0: बहुत ही प्यारा गाना है ये, तो चलिए दोस्त, हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी पसंद का ये गाना फिल्म मासूम से।

0: आपकी फरमाइश।
1: हेलो, आपकी फरमाइश।
0: जी हाँ,
1: मैं श्यामलाल रजक रामोदीन बगान टेलको से बोल रहा हूँ मैडम।
0: श्यामलाल रजक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। कैसे हैं दोस्त?
1: मैं तो ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं? निमिषा जी बोल रहे हैं क्या?
0: जी हाँ, निमिषा जी ही बोल रही हैं।
1: ओके, वेरी वेरी थैंक्स मैडम। कैसे हैं मैडम आप?
0: हम भी अच्छे हैं और हमारे पूरा आकाशवाणी का परिवार भी अच्छा है।
1: क्या चीज़, गर्मी तो बेहाल किया हुआ है मैडम।
0: जी हाँ,
1: गर्मी चल रही है।
0: जी हाँ, सही कहा आपने। और इस बार देखिए ना, हर साल ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल भी गर्मी ऐसे ही थी, इस बार भी गर्मी है और ठंड भी बहुत जबरदस्त हो रही है। जब बारिश का समय आता है तो बारिश भी बहुत जोरदार होती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हर मौसम हमें थोड़ा सा परेशान करता है। मानव मन है, संतुष्ट होना नहीं चाहता है, इसीलिए हम हर मौसम को इस तरह से लेते हैं कि परेशानी हो रही है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए श्यामलाल भाई, तो गर्मी में तो परेशानी होती ही है।
1: अभी मैं ड्यूटी में ही हूँ मैडम, लेकिन समय निकाल के
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और बताइए कि कौन सा गाना सुनना है आपको आज के कार्यक्रम में?
1: अब लता दीदी तो हमारे बीच नहीं है मैडम, लेकिन लता जी का वो सूरत सदाबहार गीत सुना दीजिए, रजिया सुल्तान का जलता है बदन, ताकि हम श्रोताओं को थोड़ी ठंडक महसूस हो सके। दो तीन ले आए कहीं से सावन।
0: जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत लाइन,
1: खूबसूरत गीत।
0: तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना अपने तमाम श्रोताओं के साथ, फिल्म रजिया सुल्तान से।

0: हेलो हेलो, आपकी फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार नमस्कार,
1: संतोष कुमार भगत
0: संतोष कुमार भगत, घाटशिला कॉलेज रोड। कैसे
1: जी। हम
0: हैं दोस्त?
1: अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छे हैं, उम्मीद
0: संतोष
1: है आप
0: भाई,
1: भी अच्छे ही होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, जब आप अच्छे हैं तो हमारा अच्छा होना लाजमी है।
1: जी।
0: संतोष भाई, गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: गर्मी तो है मैडम, परसों रोज आंधी तूफान के साथ बारिश हुआ, फिर भी गर्मी घटा नहीं है, बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा।
0: ऐसे भी कहते हैं ना कि जब बहुत प्रचंड गर्मी होती है तो शाम के समय जनरली आंधी तूफान आया करता है।
1: तूफान आती है अभी।
0: जी
1: जी
0: हाँ, और थोड़ी बहुत जो बारिश हो जाती है वो तो सबको राहत भी थोड़ी देती है ना।
1: जी एक दो दिन आराम है, थोड़ा उतना गर्मी नहीं है अभी।
0: कुल मिलाकर समय बीत रहा है और धीरे धीरे फिर मौसम बदलेगा। अभी जेठ की गर्मी है और इस जेठ की गर्मी के बाद धीरे धीरे आषाढ़ भी तो आ जाएगा। जब आषाढ़ आ जाएगा तो तेज बारिश होने लगेगी। जी हाँ, आप बताइए संतोष भाई, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में?
1: बॉम्बे का सुना दीजिए, किशोर का आवाज में,
0: कौन सा गीत?
1: मेरे महबूब कयामत होगी।
0: बहुत खूबसूरत गाना है ये। सुनाते हैं आपको फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: जी जी आकाशवाणी।
0: जी हाँ, आकाशवाणी जमशेदपुर है ये। आप कौन बोल रहे हैं भाई?
1: मैं धर्मेंद्र कुमार बोल रहा हूँ।
0: धर्मेंद्र कुमार जी, कहाँ से आपने हमें फोन किया है?
1: मैं राखा माइंड से बोल रहा हूँ।
0: धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में। धर्मेंद्र भाई, क्या करते हैं आप?
1: मेरी यहाँ हार्डवेयर की दुकान है।
0: अच्छा, तब तो आपको रेडियो सुनने का पूरा पूरा मौका मिला करता होगा।
1: जी हाँ, दुकान में बैठकर एक्चुअली जब ग्राहक रहती ग्राहकी रहती है तब तो ठीक है, फिर भी रेडियो मेरा बजते ही रहता है। हम लोग ज्यादातर वीर भारती और आपका आकाशवाणी दोनों सुनता हूँ।
0: चलिए, बहुत
1: वीर भारती के कुछ कार्यक्रम तो काफी अच्छे लगते हैं, उसमें आपका ये हेलो मन भावन, नमस्कार जमशेदपुर, और जो कुछ बॉम्बे के प्रोग्राम जाते हैं जैसे छाया गीत, जयमाला, ये सब प्रोग्राम काफी अच्छी लगती है और
0: चलिए।
1: हम इसे रेगुलर सुनते हैं। सबसे अच्छी बात लगती है जिसमें गाने की वैरायटी बहुत रहती है।
0: जी हाँ, गीत
1: और
0: संगीत के
1: यस
0: साथ कई तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं
1: हाँ
0: हमारे
1: जी
0: केंद्र से।
1: जी जी जी जी आपके जो आकाशवाणी जमशेदपुर है,
0: जी हाँ
1: इससे जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इसके अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम रहता है, ये भी काफी अच्छी लगती है हमें। और क्योंकि ज्यादातर तो मुझे संगीत से प्रेम है, लेकिन फिर भी अन्य कार्यक्रमों को भी बीच बीच में सुन लिया करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो धर्मेंद्र भाई, आज आप हमसे जुड़े हैं, हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, तो इसी बातचीत के क्रम में आप बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में जो आपने हमें कॉल किया है, कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
1: मैडम, मुझे ना वो शराबी का वो सॉन्ग, मुझे नौलखा सॉन्ग
0: जी हाँ
1: है, ये नौलखा वाला एक सॉन्ग है ना,
0: जी हाँ मुझे
1: ये मंगा
0: नौलखा मंगा दे रे ओ
1: दे
0: सैया
1: रहे हैं
0: दीवानी।
1: दीवाना है। जी, हाँ जी मैडम, अमिताभ बच्चन और जया प्रदा पे ये थी, और
0: जी हाँ
1: ये मुझे मैंने देखा है इसलिए मुझे देखा।
0: चलिए, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्म शराबी का ये गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: हेलो, आपकी फरमाइश। जी
1: हाँ, हेलो। आपकी फरमाइश।
0: हाँ,
1: मैं सोनाली से सोनाली बोल रही हूँ।
0: अच्छा सुनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों से ये प्रोग्राम आ नहीं रहा था। मैं कई बार सुनती थी रेडियो, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं आ रहा था। काफी दिनों के बाद फिर से शुरू हुआ है और
0: जी
1: आपकी
0: हाँ
1: आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: जी, धन्यवाद सोनाक्षी जी, आपने कॉल किया और आपकी इतनी मीठी आवाज़ हमारे रेडियो पर गूंज रही है। तो सबसे पहले तो हम आपकी फरमाइश जान लेना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे।
1: जी, एक्चुअली अभी क्या है ना मैम, कि अभी कभी कभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है और कभी कभी वेदर बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लगता है।
0: जी हाँ
1: और ऐसे में कभी कभी जब आकाश में चांद देखती हूँ तो मुझे वो गाना जरूर याद आ जाता है। वो दिले नादान फिल्म का गाना है ना, चांदनी रात में एक
0: बहुत ही
1: बार तुझे
0: खूबसूरत गीत
1: देखा
0: है
1: है।
0: ये।
1: जी, तो मैं आज वही गाना सुनना चाहूंगी।
0: यानी आपको नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि
1: जी
0: आपकी बातों से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे आप बरसात के मौसम की बात कर रही हैं, वहीं चांदनी रातों की बात कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा
1: जी
0: जाए तो आप प्रकृति के बहुत करीब हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और प्रकृति की जहां तक बात है, तो हमें ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं,
0: जी बिल्कुल
1: वरना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जल हमें प्रकृति से ही मिलता है, हवा प्रकृति से ही मिलती है, धूप मिलता है, छाव मिलती है, जो भी है वो सब प्रकृति की ही तो देन है।
0: और
1: और अगर हम
0: जो
1: प्रकृति की देखभाल ना करें तो फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: सही कहा आपने। और देखिए ना, जब हम प्रकृति की गोद में रहते हैं तो हमें उसकी देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा केयर करता है तो हमें भी तो उनका केयर करना चाहिए ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और यही वजह है कि जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना, तो मन करता है कि अरे काश हम पेड़ लगाए होते और ज्यादा से ज्यादा।

बातें अधूरी है पर वक्त पूरा हो चला है। आपकी चाहतों का ये सिलसिला अब थमने को चला है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो, आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था प्रीतिका। कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। शब्ब खैर, शुभ रात्रि।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत